में प्रकृति का अत्यंत प्रभावशाली मंची उपयोग हुआ है। वर्षा, पर्वत, बादल और ग्रामीण वातावरण केवल दृश्य नहीं है, बल्कि पात्रों की भावनाओं के प्रतीक बन जाते हैं। प्रकाश और ध्वनि का प्रयोग नाटक की भावनात्मकता को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। मंच पर मौन के क्षण भी संवादों जितनी ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार नाटक की रंगमंचीयता उसकी संवेदनात्मक गहराई को बढ़ाती है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक में प्रतीकात्मक और काव्यात्मक रंगमंचीयता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध नाटक अंधायुग इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। महाभारत युद्ध के बाद की पृष्ठभूमि पर आधारित यह नाटक आधुनिक मानव की निराशा, हिंसा और नैतिक पतन को प्रस्तुत करता है। इसकी भाषा अत्यंत काव्यात्मक है और मंच सज्जा प्रतीकात्मक है। नाटक में अंधकार केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक अंधकार का प्रतीक है। प्रकाश और ध्वनि का उपयोग वातावरण निर्माण में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है। युद्ध की ध्वनियां, शंखनाद, करुण पुकार और मंद प्रकाश दर्शकों को गहरे मानसिक तनाव की अनुभूति कराते हैं। इस नाटक में कोरस का प्रयोग भी विशेष उल्लेखनीय है। कोरस न केवल घटनाओं का वर्णन करता है बल्कि दर्शकों की संवेदनाओं को भी दिशा देता है। अंधायुग ने हिंदी रंगमंच को एक नई काव्यात्मक और प्रतीकात्मक दृष्टि प्रदान की। आधुनिक रंगमंच ने लोक शैली को अपनाकर नाटकों को अधिक जीवंत और जनसामान्य के निकट बनाया। हबीब तनवीर ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। उनका नाटक चरणदास चोरलोक रंगमंचीयता का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें छत्तीसगढ़ी लोकभाषा, लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक अभिनय शैली का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। मंच सज्जा अत्यंत सरल है किंतु अभिनय और संगीत के कारण नाटक अत्यंत जीवंत बन जाता है। दर्शकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने की शैली लोकनाट्य परंपरा की विशेषता है, जिसे हबीब तनवीर ने आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया। उनके नाटकों में रंगमंच केवल दृश्य प्रदर्शन नहीं रहता बल्कि वह उत्सव और सामूहिक अनुभव का रूप ले लेता है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटकों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना भी महत्वपूर्ण रूप से व्यक्त हुई। भीष्म साहनी के नाटक इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका नाटक कबीरा खड़ा बाजार में सामाजिक संघर्ष और वैचारिक प्रतिरोध का सशक्त उदाहरण है। कबीर के व्यक्तित्व के माध्यम से धार्मिक आडंबर, सामाजिक विषमता और सत्ता के विरोध को मंच पर प्रस्तुत किया गया है। नाटक में जनभाषा, समूह दृश्यों और संगीत का प्रभावी प्रयोग हुआ है। मंचीय संरचना अत्यंत सरल होते हुए भी अत्यधिक प्रभावशाली है। इसी प्रकार उनका नाटक हानुष कलाकार और सत्ता के संघर्ष को प्रस्तुत करता है। खड़ी निर्माण की प्रक्रिया नाटक में एक महत्वपूर्ण दृश्यात्मक प्रतीक बन जाती है। मंच पर वस्तुओं और प्रतीकों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करना स्वातंत्र्योत्तर रंगमंच की विशेषता रही है। इस काल में स्त्री चेतना और मनोवैज्ञानिक संघर्षों को भी रंगमंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। सुरेंद्र वर्मा का नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक स्त्री मनोविज्ञान और सत्ता संबंधों का अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है। इसमें प्रकाश, मौन और सीमित मंचीय संरचना के माध्यम से पात्रों की मानसिक स्थिति को व्यक्त किया गया है। संवादों में नाटकीय तनाव और प्रतीकात्मकता नाटक की रंगमंचीयता को सशक्त बनाती है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी रंगमंच में तकनीकी विकास भी तेजी से हुआ। मंच सज्जा अब केवल सजावट का माध्यम नहीं रही बल्कि अर्थ सृजन का उपकरण बन गई। भारी भरकम सज्जा के स्थान पर सांकेतिक और न्यूनतम मंच सज्जा का प्रयोग बढ़ा। प्रकाश योजना को विशेष महत्व दिया जाने लगा। प्रकाश के माध्यम से समय, वातावरण, मानसिक तनाव और भावनाओं को व्यक्त किया जाने लगा। ध्वनि और संगीत भी रंगमंचीयता के महत्वपूर्ण अंग

0: ഇപ്പോൾ സമയം 6 മണി കഴിഞ്ഞ് 49 മിനിറ്റും 50 സെക്കൻഡും. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ICC വിമൺസ് T20 ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് 2026 ലണ്ടനിലെ ഓവലിൽ വെച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയും വെസ്റ്റിൻഡീസും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം കേൾക്കാം ഡൽഹിയിലെ ന്യൂസ് ഓൺ എയർ ആപ്പിൽ അനന്തപുരി FM പരിപാടികളും.
1: देखिए, ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप पहली बॉल से मारने चलते जाएं, 20 ओवर तक मारते चले जाएं. ये क्रिकेट कभी नहीं होती. बट पावर प्ले इंडिया का अच्छा चल रहा था, उसके बावजूद आप ये देखिए, जब 170 रन बनाए, आज हमें लग रहा है कि वो रन कम रहे आपको, लेकिन बता कि 9 ओवर में 100 रन बनाए हम दोनों जो ऑस्ट्रेलियंस ने जो मैच जितवाया है. 9 ओवर में 100 रन, ये हर रोज नहीं बनते. 10 रन की एवरेज से ऊपर चेस कर रहे थे वो लोग. 10 रन की एवरेज तो कहीं पे भी चेस करना मुश्किल होता है, और खासकर वुमेन्स क्रिकेट में. डिपेंड करता है आपकी बॉलिंग कैसी है. आप में जो वीकनेस थी आपकी बॉलिंग में थी, आपके बॉलर सेट नहीं थे. अगर बॉलिंग ठीक ठाक करेंगे तो 170 रन कम नहीं होते हैं चेस करने के लिए. पहले उनके 4-5 विकेट कैसे गिरे थे, और खासकर दोनों जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, इस वजह से मैच जीत गए. बाकी ये है कि आपको 6 ओवर तक आपको डेफिनेट होता है कि आप 40-50 रन का टारगेट रखिए, विकेट्स लूज नहीं करिए. उसके बाद अगले 6-7 ओवर में फिर आप 60-70 रन का टारगेट, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है. लेकिन अगर आप पहली बार 2-3 विकेट निकल गई तो आपको जो 180 रन का टारगेट, वो 100-150 रन का टारगेट.
2: राकेश, जैसे हमने देखा इंडिया मैच में जिमीमा खेल रही थी लेकिन वो रिटायर्ड आउट हुई ताकि रिचा आए. क्या आपको लगता है आज वेस्ट इंडीज, जैसे आपने कहा कंजर्वेटिव खेलने से नहीं चलेगा, ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेंट है, क्या हम देख सकते हैं कि भले एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, अगर मान लीजिए वो थोड़ा भी धीमा खेल रहा है तो कप्तान कहेगा कि आप आ जाइए और दूसरे व्यक्ति को भेज दे?
3: देखिए, वो डिपेंड करता है उस वक्त टीम के जो थिंक टैंक है वो क्या सोच रही है. ये आपके पास एक ऑप्शन है, अब आप उसको एक्सरसाइज करें, ये जरूरी नहीं है. लेकिन जब मैं कहता हूँ अटैकिंग दिस थिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके बल्ला घुमाना है.
2: ओके,
3: मेरा मतलब ये है कि आपको डॉट बॉल्स नहीं छोड़नी है. डॉट बॉल तो क्राइम है. आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए, एक ही बल्लेबाज को अटैक करने का मौका ना दें आप, उसको बॉलर को प्लान करने ना दें आप चेंज करते रहिए. वो होता है कि आप उनको सेटल नहीं होने दे रहे. ऑस्ट्रेलिया को अनसेटल्ड रखेंगे आप शुरू से. यू हैव टू कीप देम यू नो इन अ सॉर्ट ऑफ यू नो लाइक नॉट्स में आपको बांध के रखना पड़ेगा उनको कि ये हो क्या रहा है.
2: आशा, कैसे क्रिकेट बदला है? अब राकेश आपको एक डॉट बॉल खेलने से भी मना कर रहे हैं.
3: एक नहीं, मैंने कहा डॉट बॉल्स कम से कम.
4: ये T20 आ गया ना, तब से तो डॉट बॉल, मतलब जिसने डॉट बॉल खेली क्राइम है.
2: नहीं, पर करें, पेड़ तो
5: स्ट्राइक रेट, डॉट बॉल बहुत हैवी फोकस में आ जाते हैं, स्ट्राइक रेट भी खास तौर से. ट्रू, इट कम्स इनटू प्ले.
2: सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से अच्छा है, एक डॉट बॉल पे पेड़ लगता है.
5: गुड पॉइंट अमित, वेल मेड. वेल ओके, इस बात को जारी रखते हैं आगे आशा, बिकॉज अच्छी बात होती है. डॉट बॉल्स की बात हो रही है, जिस तरह के एरा में हम T20 देखते हैं, वहां पे एक तरफ राकेश का पर्सपेक्टिव है, फर्स्ट बॉल से हिट करते हैं. वी हैव प्लेयर्स अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, फर्स्ट बॉल से हिटिंग की स्ट्रैटेजी रखते हैं. मैं मेल क्रिकेट की बात करूँ, फीमेल में भी अगर बात करें तो हमारे पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं. दूसरी तरफ रवि कहते हैं कि फर्स्ट बॉल की हिटिंग अटैक विकेट अटैक मोड फ्रॉम द फर्स्ट बॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद एक खिलाड़ी रह चुकी हैं. आप किस तरह की रणनीति को कहती हैं ज्यादा सस्टेनेबल एंड ऑफ कोर्स ज्यादा सुलझी हुई रणनीति है कि आप इस तरह के अप्रोच से T20 को अप्रोच करें?
4: सबसे पहले तो सिचुएशन डिपेंड करता है, आप क्या कर रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं या आप चेज कर रहे हैं, क्या डिफेंड कर रहे हैं, जो भी वो डिपेंड तो सिचुएशन में करता है सबसे पहले. फिर ऑब्वियसली T20 खेल रहे हैं तो आपको लॉफ्ट ये सब कुछ चीज करनी ही पड़ती है. सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज भी करना पड़ता है आपका गेम. कब आपको, अगर आपको लग रहा है कि सिंगल से बन रहे हैं रन तो आप सिंगल करेंगे, जब आपको लग रहा है कि नहीं है
2: जी. और आशा, आज ऐसा नहीं है कि इंडियन एंगल नहीं है, अभी जब दोनों टीमें बाहर आ रही हैं, एम्पायर्स आ रहे हैं, तो इंडियन पर्सपेक्टिव भी है वहां पर. हमारे जो अंपायर हैं, मैच रेफरी,
4: अच्छा वो
5: इंडियन रिप्रेजेंटेशन से आए हुए हैं.
4: राइट
2: राकेश,
4: और ये हमारे साथ हमारी सीनियर प्लेयर रही हैं, रेलवे से खेली जब मैं, तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे की प्लेयर हैं.
2: थोड़ा उनके बारे में बताइए.
4: ये लक्ष्मी, ये बहुत अच्छी स्विंगर बॉल थी, बहुत अच्छा बॉल करते थे. मतलब इनके साथ मैंने ज्यादा नहीं खेला है, पर जब मैंने रेलवे ज्वाइन करा था तब उनके साथ मैंने एक इंटर रेलवे खेला है अपने.

0: नॉर्दर्न से और ये साउथ सेंट्रल रेलवे में से।
1: और राकेश, पूरा एक इकोसिस्टम ग्रो करता है जब वुमेन्स क्रिकेट आगे बढ़ता है, खिलाड़ी के साथ साथ चाहे मैच ऑफिशियल्स हों, सारे अवसर मिलते हैं।
2: बिल्कुल, देखिए अभी मुझे वही याद आ रहा था जब हमने होस्ट किया था वर्ल्ड कप वुमेन्स का, मैं जिस हफ्ता टूर्नामेंट शुरू होना था उस टाइम होता था वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन WCA, उनके पास होटल बुक करने को या उनको एडवांस देने के पैसे नहीं थे। सो दे वेंट टू हीरो एंड उन्होंने कहा कि अंकल हमको कुछ तो पैसे दे दीजिए। तो पवन मुंजाल उनके जो डैड हुआ करते थे, उन्होंने कहा बेटा इनको कुछ पैसे दे दो। तो जो सेक्रेटरी और वो थे उनको पता नहीं लगा क्या दिया जाए। एक 50 लाख का चेक दे दिया गया था, अकाउंट नहीं किया गया था। उन्होंने कहा बेटा पहले आप होटल बुक करो। एक वो दिन है और एक आज का दिन है, WPL आ गया, वुमेन्स क्रिकेट के वुमेन क्रिकेटर्स को लोग पहचान रहे हैं, और ये जो चेंजेस मैंने देखे, मैंने एक ज़माने से मैंने देखा है, शांता रंगास्वामी के टाइम पे जो हम सुना करते थे डैन एडिल जी, उसके बाद एक न्यू जनरेशन के आए, नाइन्टीज़ में अगर आप देखें, लेट नाइन्टीज़ में मिनोती देसाई कैप्टन, इंडियन टीम वॉज डूइंग वेल, एयर इंडिया की टीम अच्छी हुआ करती थी, ये सब। अब आप देखिए, आप लोकल टीम्स या स्टेट टीम भूल गए, अब आप WPL की टीम्स को याद रखें। सो पूरा जैसे आपने कहा इकोसिस्टम चेंज हुआ है, वो तब से हुआ है जब से BCCI आई, और जब से जय शाह आए उन्होंने सबसे पहला काम किया कि इक्वल पे, आई थिंक दैट वाज अ ह्यूज मूव। तो उससे जो इंडियन क्रिकेटर्स को जो फायदा हुआ है उसका फायदा हमें अब मिल रहा है।
3: Right, and just to take this point forward, we're talking of ecosystem over here. The whole spirit of the game, that the visuals that are coming out from the stadium right now, well, surprisingly, and the most beautiful thing is, हमारे सारे listeners के लिए हम आपको बताएं कि सिर्फ Australian support नहीं आया है, huge amount of West Indian support भी आज देखने को मिल रहा है। और रवि, quickly आपसे पूछूंगी, ये एक बहुत खूबसूरत टीम है जब आपके सामने एक ऐसी दिग्गज टीम हो जो heavy favourites हो, लेकिन support के नाम पे आज इतना ज्यादा West Indian support और crowd turnout हुआ है to support their favourites also.
4: डेफिनेटली उनको सपोर्ट करना भी चाहिए, अपनी टीम को सब सपोर्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें फेवरेट से खेल रहे हैं, कोई भी खेल रहे हैं। आयरलैंड की टीम ने आपने देखा कैसे सब उनका आए और कैसे इंडियंस को कैसे हरा के गए हैं। होम टीम है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और अब बाकी आप थोड़े दिन में देखते हैं कि मैच का क्या रिजल्ट
1: आता है। जी आशा, जब ये फ्लैग्स ले आउट करते हैं गूज़बम्स आते हैं जब राष्ट्रगान होता है तो?
0: बहुत ज्यादा आते हैं।
1: क्या फील?
0: बहुत ज्यादा, मतलब ये बोल नहीं सकते, बयान नहीं होती ये चीजें, ये बस आपका जिस जज्बे से आप खेलते हैं ना इंडिया के लिए, बस वही जज्बा रहता है।
1: आशा को जब इंडिया कैप मिली थी इंग्लैंड के खिलाफ, तब क्या यादें हैं?
0: वो यादें क्या है ना कि उस समय मुझे ये लगता है कि इतना ज्यादा ऐसा चाव नहीं था कि मतलब क्या होता है, मतलब खेला, रिप्रेजेंट करा, उसके बाद धीरे धीरे लगा कि यार किस मुकाम में है, हमने इंडिया खेला है। उस समय ऐसा लगता था अच्छा खेला, ठीक है, गुड
1: जी,
0: बस।
1: चलिए अंतिम सवाल आप सबसे राकेश, आज कितने रन बन सकते हैं वेस्ट इंडीज के और कौन जीत रहा है, आज क्या कुछ हो सकता है?
2: मैंने तो ऑलरेडी कहा है कि 150-160 मैक्सिमम, 8 रन एज एन एवरेज में लेके चल रहा हूँ, एंड ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू विन।
1: ऑस्ट्रेलिया विल विन। रवि जी,
4: लगता तो ऐसे ही है कि 140-150 बनाएंगे, अगर 180 तक बनाते हैं तो एक मैच अच्छा हो सकता है।
1: आशा जी?
0: मेरा भी यही है, 160-165 तो बनने ही चाहिए, अगर अच्छा एक मैच देखने को मिलेगा हमें।
1: और बीच वाला जो मैच है राकेश, उसे हम कहते हैं फ्री हिट 20। आपको लगता है नो बॉल होंगे, कुछ फ्री हिट्स भी मिलेंगे?
2: बिल्कुल मिलेंगे।
1: जब फ्री हिट होती है तो बल्लेबाज क्या सोचता है, क्योंकि आप तो राइट हैंडेड टॉप बैटर है,
0: तो वो जो सब सोचते हैं, ऑडियंस सोचती है ना, वही बैट्समैन भी सोचते हैं।
1: लेकिन उसमें स्टंप हो सकते हैं क्या फ्री हिट पे?
0: उसमें रन आउट होता है केवल,
1: स्टंप नहीं हो सकता, सिर्फ रन आउट हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। पर आप क्या सोचते हैं कि छक्का ही मारें कोई भी बॉल आए?
0: हाँ, मतलब उस बॉल में तो सब सिक्स मारने का ही सोचते हैं ना।
1: चलिए जब फ्री हिट 20 आएगा तो उसमें देखेंगे कितनी नो बॉल हुई। फिलहाल इस कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए आशा रावत आपका, राकेश राव आपका, और रविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।
5: First ball 20.
1: For ball by ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action.
6: Good evening, and we have reached the business end of this World Cup. The semi-finals, the much-awaited action begins at the Oval. The former champions Australia and West Indies, who had the 2016 win defeating Australia, but it's been Australia who'd been champions for a very long time. So it's going to be an intense battle between these two sides. And this morning the temperature at the Oval is about 23 degrees Celsius, might reach up to about 27-28, but then a look at that pitch really made a statement that it could probably have a variable bounce. The spinners might have some kind of a role to play, and the top surface remains

0: papers, let's say, but it's who blinks first. Here's Hamilton bowling wide outside the off stump. And a good carry to the keeper. Nice to see that the ball, after pitching upright on the seam, carries on to the keeper. And that's a good sign. This pitch, though, might just get a bit variable. But from a far distance, if I look at the pitch, it has a greenish tinge. Though it's not a green top, but then the greenish tinge would have prompted any captain to first come and bowl here. As Campbell rushes in, has got a very long run up, left arm over the wicket, bowls. And that ball was trifle short, letting the batter, the left-hander, play, waiting for that one in the crease, onto the own side to square leg, and picks up a single. That score takes the score up to 6 for the loss of no wicket. Good sedate start, but if I had mentioned the name of the players, once again, it's going to be Wall, Mooney, Lynchfield, Perry, Gardner, Wareham, Sutherland, Milner, Carey, Garth and Hamilton, the unchanged side for the Australian side, whereas West Indies has made one change to bring the off-spinner, as here is Hamilton over the wicket bowling, slightly short and off the back foot, going back into the crease, just about taps it down into square leg, mid-wicket rather, and before the fielder comes and picks it up, the batters have crossed over for a single, moving the score up to 7. It's important that you make use of the first 6 overs when there are two fielders outside the 30-yard circle, and that's where you can get the score to be propelled. At least get about 45 to 50 odd runs, then you're better off. You get a very good platform, and the bowlers must make sure they don't pitch in the slot, otherwise you've got people like Matthews who can hammer. And this is the outside the leg stump delivery, should be a wide. Definitely Mooney had to really go to her right and pick up the ball. She's a good keeper behind the stumps, very very flexible and very agile. And she saves the blushes, because that is wide outside the leg stump. And the score remains with 1 more to 8 for the loss of no wicket. So one extra delivery, one extra wide. Here is Hamilton bowling this one, which is just about on the off stump. The loosely held bat played onto the offside to the backward of point. And the score is 8 for the loss of 1 wicket after 1 over.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: Over to Sanjay. Sanjay, wonderful first over.
4: बिल्कुल, अगर आप वेस्ट इंडीज के लिहाज से देखें तो एक अच्छा ओवर. और जहां तक शुरुआत का सवाल, तो कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं मिली गेंदों को. ऑन द स्टंप्स फेंका, किसी तरह का बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला शुरुआती ओवर में. हालांकि हवा तेज है वहां पर, किन गार्थ इस समय गेंदबाजी की शुरुआत कर रही है. दूसरा ओवर है और मैथ्यूज जो कि सबसे सॉलिड बैटर हैं टीम की, ऑफ स्टंप से टप्पा खाकर थोड़ा सा बाहर की ओर निकली थी. पॉइंट की दिशा में उस गेंद को हल्के से केवल प्लेस किया, कोई रन नहीं. अच्छी बात यह कि कोई बहुत जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं दिखा रहे वेस्ट इंडीज के ये दोनों बैटर्स. उन्हें पता है कि उन पर कितना दारोमदार है टीम का. और अगर आप इन दोनों बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखें तो वो 115 और 116 है. वृंदा राठी भारत की हैं और इस मुकाबले में अंपायरिंग कर रही हैं सेमीफाइनल में. और किम कॉटन है उनके साथ, जो कि न्यूजीलैंड की 8 रन बिना किसी नुकसान के. और इस बार गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा टप्पा खा करके बाहर निकल रही थी. मैथ्यूज ने बल्ला चलाया जरूर था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं. किस्मत अच्छी. और एक परेशानी का दृश्य देखने को मिला कुछ समय पहले, जब डियंड्रा डॉटन को तकरीबन 2-3 लोग उठा करके लेकर के जा रहे थे. समझ से परे है कि डॉटन को हुआ क्या, लेकिन एक बहुत अच्छी बैटर है टीम की. उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द वो वापस लौटेंगी. शॉर्ट थर्ड स्लिप, डीप बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर. और इस बार दोनों स्लिप्स के बीच में से गेंद निकलती हुई चली गई 4 रनों के लिए. थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर.
5: ये लगा आभा का चौका.
0: Well, that was a freaky shot on the offside, not intended, but squeezes through the third man region, through the slip cordon. And that was a lucky boundary for the side, almost to the outstretched hands of the fielder. Sanjay, that was close.
4: बिल्कुल नजदीक मामला हो सकता था, और काफी तेज छलांग भी लगाई थी उस गेंद को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, लेकिन संभव नहीं. लेकिन पावर प्ले है, और पावर प्ले में आप इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत

0: ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। लगातार गेंदों को ऑफ स्टंप पर टप्पा डाल रही हैं और थोड़ा सा बाहर की ओर निकालने की कोशिश, एक हल्का जो स्विंग का मोमेंट है वो देखने को मिल रहा है गार्थ की गेंदों पर। एक स्लिप बिल्कुल विकेट से सटे हुए और आप इसे शॉर्ट थर्ड मैन कहें, थोड़ा सा काफी पीछे स्लिप के और वहीं से उन दोनों के बीच से वो कैच निकलता हुआ। गार्थ ने अब तक 5 रन दिए हैं। वेस्ट इंडीज ने 13 रन बना लिए, अच्छी शुरुआत। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और खासतौर पर मैथ्यूज जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमती हैं तो फिर किसी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर देती हैं। जोसेफ उनका कितना साथ देंगी। 3 गेंदों पर अब तक 1 रन बनाए हैं। मैथ्यूज ने 7 गेंदों पर 11 रन बनाए हैं। दोनों का स्ट्राइक रेट अपनी टीम के अंदर सबसे ज्यादा है, यानी कि अगर ये जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी नहीं तोड़ी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सफर आसान नहीं रहने वाला है। वेस्टइंडीज एक ऐसी टीम है जो अनप्रेडिक्टेबल मानी जा सकती है, हारने के लिए किसी भी कमजोर टीम से हार जाए और हराने के लिए दुनिया की मजबूत टीमों को भी शिकस्त दे दे। हल्के से इस गेम को खेलना चाहती थी, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाई, लेकिन कोई रन नहीं, सुरक्षित अपनी जगह पर। तो इस लिहाज से गार्थ का ये बेहतर ओवर, अच्छा ओवर कम से कम, जो स्टंप्स लाइन की डिलीवरीज लगातार मैथ्यूज के लिए डाली जा रही है और उसकी जरूरत भी है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में बैटर को बहुत ज्यादा खेलने की आजादी दे देंगे, स्ट्रोक्स की आजादी दे देंगे, तो फिर रन्स बनने की शुरुआत होगी और फिर प्रेशर आप पर पड़ेगा। जोसेफ 1 रन पर, मैथ्यूज 11 पर। ये गेंद और इस बार मोड़ दिया है, गेंद फिर जा रही है फाइन लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन एकदम बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद फील्ड कर ली गई। मौका यहां पर रन बनाने का, दौड़ करके 2 रन पूरे किए 15 2 ओवर के बाद।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: The first two overs we've seen the West Indies batters playing with consummate ease. They're not in any kind of bother. They are playing with comfort and I think the Australian bowlers have to now apply themselves and pitch the ball in the right areas. This is more important on a pitch where, you know, the first half you will have to keep the batsmen or the batters guessing and keep them in business. Both Hamilton and Garth have tried their best. Hamilton looking a bit pedestrian today, but Garth did bowl well. But the batters were even cleverer. They overwhelmed and made sure that they took advantage of the ball being slightly short, go back into the crease and play the ball. Here is Molyneux coming in, the captain of the side now, left arm. And that ball comes in with the arm. And the batter was so clever. Matthews off the back foot plays it down into back foot point. The ball hits the fence, 4 runs.
3: Ye laga, abha ka choka.
2: Sanjay, what a shot.
0: Kamal ke strokes aur jo bhi strokes aa rahe hain, wo wicket ke piche. आमतौर पर हम देख रहे हैं कि रन्स बन रहे हैं, अभी तक स्ट्रेट नहीं खेला है, वी पर नहीं खेला है।
2: But then that ball was an arm ball, but then going back into the crease and cuts it brutally through the backward point region. Here's Molyneux. Next one, this time she steps and plays it across the line. That ball sure going to the square leg fence. 4 runs.
3: ये लगा आभा का चौका।
0: कप्तान का जबरदस्त इस्तकबाल किया, लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। रफ्तार बहुत नहीं है, 78 के आसपास, और उसका जितना इस्तेमाल किया जा सकता है। बढ़िया शॉट खेला ऑन साइड पर, लगातार दूसरा चौका।
2: मैथ्यूज इज हाई स्कोर दिस वर्ल्ड कप हैज बीन 48। शी हैज प्लेड ऑल द 5 मैचेस एवरेजिंग 23, स्ट्राइक रेट ऑफ 97। शी हैज टू कीप दैट बेटर। हियर इज मोलिनेक्स बॉलिंग इन, दिस इज स्ट्राइकिंग अ पैड्स आउटसाइड द लेग स्टंप, एंड आई थिंक मैथ्यूज इज क्लियर इन एन इंटेंट that she is going to strike and make sure she exposes the fielding side in the first 6 overs and gets all the gaps through and playing in the areas where the fielders are not there on the fence. This time bowling and pushing the batter on the back foot, but she is clever enough to play it across the line to mid wicket deeper, and there is a fielder outside the 30 yard circle who picks it up, and one more run taken. The strike rotation is very important because you got a right and a left hand batter in the center, and this over has seen couple of boundaries which the captain won't like, Molyneux, and she's now placed a fielder there on the fence at the long on and one at the deep square leg. rest all inside the 30-yard circle. There is no slip at all. The keeper right up to the stumps. Here's the left-handed Joseph facing.

0: The next delivery slightly back of the length, plays it down into mid-on, crosses over for a single, takes the score up by one more to 25 for the loss of no wicket. One more delivery to complete the third over. So far, the run rate looks to be pretty healthy, 8.82. We are in the third over. Until the sixth over completes, you can't have more than two fielders outside the 30-yard circle. Here's Molina bowling this one outside the off stump, and the batter goes, creates width, plays it down into backward point, well fielded. End of the third over. West Indies 25 for no loss.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
1: तुम हो ही भुलक्कड़.
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
4: चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है. वेस्ट इंडीज ने अब तक एक भी विकेट गवाया नहीं. एक अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत आप कह सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसके पास बल्लेबाजों की एक सॉलिड फहरिस्त है. इसके अलावा गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन, 5 के 5 मैचेस जीते उन्होंने. अब वेस्ट इंडीज का वही मिला जुला प्रदर्शन, 2 मैचेस हार गए. इंग्लैंड से हारे चलिए अलग बात थी, यहां अच्छी शुरुआत की कोशिश. गार्थ का दूसरा ओवर और ये एकदम सेट पैटर्न है ऑस्ट्रेलिया का. शुरुआत में वो अपने दोनों ओवर से, दोनों गेंदबाजों से 2-2 ओवर्स करवाते हैं, फिर कोई परिवर्तन देखने को मिलता है. हल्का सा केवल गेंद को प्लेस किया था, कोई रन नहीं. चौथा ओवर शुरू. मैथ्यूज, आपको याद होगा 2023 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन किया था. एनेबल सदरलैंड को 2 विकेट चाहिए 50 विकेट्स पूरे करने में T20 इंटरनेशनल में. और इसी तरह से कैंपबेल को 13 रन चाहिए 500 रन बनाने में T20 वर्ल्ड कप के बीच. सॉलिड शुरुआत वेस्ट इंडीज की. पहला सेमीफाइनल विश्व कप का गार्थ, और इस बार अपने स्ट्रोक को चेक किया. काफी धीमी गेम अपेक्षाकृत, और पहले ऐसा लगा कि जैसे वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहती, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने अपने स्ट्रोक को चेक किया. डॉटिन को किसी तरह की चोट दिखाई दे रही है प्रेम, ऐसा लग रहा है कि उनके कहीं पैर में, मांसपेशियों में खिंचाव है.
0: बट डजंट लुक टू बी वेरी सीरियस बिकॉज वी प्रोबेबली हैवंट गॉट एनी अपडेट ऑन हैज दैट बीन एनी सीरियस, बिकॉज हैड इट बीन सीरियस आई थिंक देयर शुड हैव बीन अ क्लियर अपडेट. संजय,
4: बिल्कुल इंतजार है उसका, लेकिन एक अच्छी बल्लेबाज है टीम की, और इस बार शॉट खेलना चाहती थी, थोड़ा सा लेट आई स्ट्रोक के ऊपर, और इसीलिए कनेक्शन सही मिला नहीं. गेंद को बल्ले के बीचों बीच मेडल किया नहीं, सिर्फ इकलौता रन. मैथ्यूज अब स्ट्राइक लेंगी 20 की व्यक्तिगत रन संख्या के साथ 12 गेंदों के बाद. गार्थ की गेंद सीम के सहारे आमतौर पर टप्पा डालती है, और लगातार एक हल्का सा मूवमेंट, पिछला ओवर भी हमने देखा था, उनकी गेंदों पर हरकत है और उसका वो पूरा फायदा लेना चाहती हैं. रनों की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई, लेकिन इसके बावजूद अभी 7.5 के आसपास का औसत है. एक बेहतर स्थिति कही जा सकती है, बशर्ते कि आपने कोई विकेट ना गवाया हो. ये के मिडिल स्टंप पर, एकदम स्टंप टू स्टंप अटैक, बिल्कुल आजादी नहीं दे रही है दोनों बैटर्स को, और यही वजह है कि वेस्ट इंडीज का स्कोर थोड़ा सा रुक रुक कर बढ़ रहा है. जिस तेजी के साथ शुरुआत हुई थी वो तेजी फिलहाल नदारद है. हालांकि पावर प्ले चल रहा है, पहले 6 ओवर्स में आप बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, उठा करके खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार स्टंप्स पे अटैक करेंगे तो फिर मुश्किल होता है. और वैसे भी हेली मैथ्यूज बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, खासतौर पर गेंदों को उठा करके खेलने के लिए जानी जाती हैं, आज थोड़ा संभल कर खेलती हुई. कप्तानी की पारी 2023 का मैं जिक्र कर रहा था, 64 गेंदों में 132 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे. सिर्फ 2 मैचेस वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं, एक तो विश्व कप का फाइनल. ओहो, इस बार फिर गेंद को थोड़ा सा उन्होंने रोक करके डिलीवर किया गार्थ ने, काफी इंटेलिजेंट बोलिंग आप कह सकते हैं, और तमाम खिलाड़ियों ने उसकी दाद दी. बढ़िया गेंदबाजी, अब तक सिर्फ 1 रन इस ओवर में, और जब आपके रन नहीं बनते हैं तो बैटर पर एक प्रेशर क्रिएट होता है. समझ नहीं सकी थी गेंद को क्या करना चाहती हैं, एन वक्त पर किसी तरह से रोकने का प्रयास, गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी.

0: 6 on the onside to the long on region, and she made sure that she connected the ball well. But what I've seen so far is that this pitch, if you look at the batters getting the ball, they're not really getting it connected on to the bat, because sometimes the ball just holds up. And this pitch, as we said earlier, that might just trouble the batters initially. Their timing might slightly get off synchronization, and that's what we have seen. They're trying to play the ball and the ball goes elsewhere, and the connect between the bat and ball really doesn't happen. So it happens in cricket in some of the grounds, and Oval is one such area where we've seen that the team that bowls first, bats second, the win percentage of that side had been rather very, very encouraging. So Australia will be fancying a victory here. I'm just saying fancying, but it all depends on the last delivery bowl. It is Wareham being brought into bowling attack. 6 matches, 5 wickets for her. She comes in and bowls. And bowling! This is the one. She's trying to play that scoop. And the wicket falls. And one gets the wicket of Matthews for the score of 30 of 26.
1: Matthews ka wicket chala gaya. और ये परेशानी का सबब है वेस्ट इंडीज के लिए. मैथ्यूज बेहतर खेल रही थी, जोसेफ नहीं चल पा रही थी. इस बार इस गेम को आगे बढ़ करके हल्के से केवल प्लेस करना चाहती थी, लेकिन गेंद टप्पा खा करके अंदर की ओर आई और पूरी तरह से लाइन को मिस किया मैथ्यूज ने. पहला विकेट वेस्ट इंडीज का गिरा 47 के स्कोर पर. 90 ओवर में हेले मैथ्यूज 28 गेंदों पर 30 रन बनाकर वारहम का शिकार बनी. गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ, वारहम लाई गई और आते ही उन्होंने ये सफलता हासिल कर ली.
0: संजय, इफ यू रिमेंबर व्हेन द इंडियन टॉप ऑर्डर वाज बैटिंग, स्मृति मंदाना, शी ट्राइड टू सिमिलरली प्ले अ स्ट्रोक लाइक दिस व्हेन शी वाज वेरी वेल एंट्रेंच्ड. एंड समटाइम्स व्हेन द बॉल इज स्ट्राइक ऑन द स्टंप लाइन, इफ यू टेक अ रिस्की शॉट लाइक दिस, वांट टू स्कूप द बॉल और पैडल स्वीप द बॉल, इफ यू मिस इट सर्टेनली इट विल नॉक योर स्टंप्स.
1: बिल्कुल, इस तरह के स्ट्रोक खासतौर पर जब गेंदबाज अपनी शुरुआत कर रहा हो, पहली एक दो गेंदे हो, आपने अगर उनका 3-4 गेंदे या एक ओवर नहीं खेला हो तब रिस्क नहीं लेना चाहिए. कम से कम इस तरह के स्ट्रोक जब आप विकेट खुला छोड़ देते हैं, बल्ला चलता है आपका और अगर टप्पा खा करके वो गेंद आपने मिस की तो फिर विकेट गिरता, और वही हुआ मैथ्यूज के साथ.
0: सो कैम्पबेल कम्स इन, फेसेस द फर्स्ट डिलीवरी, अ लिटिल ऑकवर्ड बट देन स्लाइटली प्लेस ऑन द ऑन साइड. But then I must say that the way Matthews played that last one, she went outside the off stump line. As here's the next delivery from Wareham, and that's been played onto the onside to the backward square, and that hits the fence for sure. 4 runs.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: बेहतर रणनीति, आपको स्ट्रोक्स की जरूरत है अन्यथा आप फील्डर्स आप पर हावी होंगे. थोड़ी सी फ्लाइट कराने की कोशिश थी और बढ़िया स्ट्रोक खेला, फील्डर के नीचे से गेंद निकल गई 4 के लिए.
0: Another delivery now outside the off stump, and Campbell, who is a daring batter, she doesn't mind playing those strokes initially. She doesn't take time to settle down, and the way she played that sweep stroke, almost like a slog sweep on the own side, and got a boundary. The next one is defensive. The ninth over underway. Wareham comes and bowls. She's a leg spinner. Bowls wide outside the off stump. That goes further away. And off the back foot just about. Plays the ball into the extra cover region. No fielder there. And that's another boundary. 4 runs.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: चलिए, विकेट कीपर कैम्बल ने आने के बाद 2 स्ट्रोक्स लगाए हैं, 2 चौके लगाए हैं. और वेरहम को जो सफलता मिली थी शुरुआत में, उस सफलता पर थोड़ा सा पानी फेरने में सफलता हासिल की है. लेग ब्रेक गेंदें आ रही हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि कैम्बेल को कोई परेशानी है.
0: Yes, the next delivery, that's on the middle and leg stump, and the batter plays it, offering the full face of the bat, and plays it down back into the hands of the bowler. No runs taken, 9 overs gone, a 6 is full over, 55-1 West Indies.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: नए ओवर की शुरुआत. 1 विकेट गंवा चुका है वेस्ट इंडीज. हेले मैथ्यूज के तौर पर काफी अनुभवी टीम की कप्तान.

0: नौ ओवर के बाद 55 एक विकेट पर, रनों का औसत थोड़ा सा बढ़ता हुआ 6.11। सदरलैंड की जगह पर गेंदबाजी के लिए अब मॉलिन्यू आई हैं। बढ़िया स्ट्रोक गेंद का, ओहो, लेकिन खिलाड़ी मौजूद था एकदम बाउंड्री लाइन के ऊपर, सीधे हाथों में गया और ये दूसरा विकेट गवा दिया, यानी कि सलामी जोड़ी बाहर हुई वेस्ट इंडीज की। जोसेफ का विकेट भी गिर चुका है।
1: Well, this is once again taking a chance and trying to play across the line. A premeditated stroke went up in the air to the mid-wicket region, straight into the hands of the waiting fielder. Didn't have to do much about it. And a wicket comes in the very next over. So two consecutive overs and two consecutive wickets. Quite a juice of caught Gardner. Bowled Molyneux. So Molyneux gets another wicket, and this probably may just set a different run rate once a new batter comes in. Both openers going back to the pavilion.
0: बिल्कुल, प्रेशर अब जबरदस्त होगा क्योंकि आपने दो विकेट भी गवा दिए, रन्स भी नहीं बने, स्ट्रोक पड़ा था लेकिन शायद फील्ड का तरीके से मुआयना नहीं किया, जहां पर गेंद गई वहां पर बहुत इत्मीनान के साथ वो कैच पकड़ दिया गया। तो दूसरा विकेट वेस्ट इंडीज ने गवा दिया है, सलामी जोड़ी जा चुकी है, कियाना जोसेफ और हाइली मैथ्यूज दोनों इस समय वापस पवेलियन में लौट गई हैं। कैंबेल आई हैं, अब कैंपेल के बाद कौन आता है खेलने के लिए? डॉटन आज पूरी तरह से फिट नहीं दिखाई दे रही, स्टेफानी टेलर।
1: बट संजय, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इफ द बैटर इज स्ट्रगलिंग एंड गेट्स आउट, अ न्यू बैटर कम्स इन, देयर कुड प्रोबब्ली बी एन इंप्रूवमेंट इन द रन रेट्स।
0: ऐसा लगा था खासतौर पर जब कैंपेल खेलने के लिए आई, दो बड़े स्ट्रोक लगाए उन्होंने, लेकिन एक के बाद एक दो विकेट गिरने के बाद एक प्रेशर तो अनावश्यक तौर पर उन्होंने ओढ़ ही लिया है, क्योंकि रन्स भी नहीं बन रहे और दो विकेट भी चले गए। अगर रन्स बनते तो शायद बेहतर स्थिति होती। मॉलिन्यू को यहां पर सफलता मिली और एक अच्छी सफलता। स्टेफानी टेलर आई हैं, क्या बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, 3,666 रन हैं इनके कुल मिलाकर, 90 की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली इस बार। हल्के से ऑफ स्टंप पर मॉलिन्यू का जहां तक सवाल, काफी कसी हुई और अच्छी लेंथ पर गेंदें डालती हैं लगातार, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदे उनकी, और उसको समझना कम से कम शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी वाला काम होता है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, क्या टप्पा लेग स्टंप के बाहर था या टप्पा बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर था और इसीलिए वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़कर के अब 3 हुई है और वेस्ट इंडीज अब तक स्ट्रगल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप पुराने रिकॉर्ड को देखें, इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए, आधा सफर बीत जाने के बाद अगर आपके स्कोर बोर्ड पर 57 रन है और दो विकेट आपने गवा दिए हैं तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। मोड़ना चाहती थी, बल्ले के मुंह को उन्होंने मोड़ा जरूर था ऑन साइड पर, लेकिन गेंद उनके अनुमान से ज्यादा टर्न ली, उछाल था, टप्पा लगा और गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पर लगकर थोड़ी देर हवा में थी, अपनी जगह पर सुरक्षित। और इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन एंड वक्त पर स्ट्रोक को चेक किया। मॉलिन्यू बहुत ही बुद्धिमत्ता से गेंदबाजी डाल रही है, खासतौर पर उनकी लेंथ लगातार परेशान कर रही है कैंबेल को। पिछले ओवर में जब लेग ब्रेक के खिलाफ उन्होंने दो चौके एक के बाद एक लगाए, वही ऑफ ब्रेक के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है। और इस बार स्वीप शॉट खेला था लेकिन गेंद सीधे गई जॉर्जिया वॉल के पास, उन्होंने फील्ड किया कोई रन बनाने का मौका नहीं। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेल रहे हैं, दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होगा। भारत अपना पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हार कर एक कड़े मुकाबले में बाहर हुए, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके और इस बार बैकफुट पर गई, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, इकलौता रन दौड़ करके पूरा किया, 10 के बाद 58 पर 2 वेस्ट इंडीज।
1: सो 10 ओवर्स एंड द रन रेट 5.8, which is certainly not a par score for the moment, because if you have to literally make sure that you get a win here, the par score there should be about 165 plus, to say the least, because Australia is in tremendous form. And Sanjay, if you look at the Australia side, there are 7 all-rounders. You see, that is one of the strengths.
0: Prem, agar aap all-rounders ka zikr karein, to Australia ke paas to 7 all-rounder hain, लेकिन वेस्ट इंडीज की पूरी टीम ऑलराउंडर्स की अगर आप उस लिहाज से देखें, वो कितने गेंदबाजों का इस्तेमाल करेंगे ये आप देखिएगा।
1: वेल, आई अंडरस्टैंड दैट, बट द बिग क्वेश्चन

0: Has it got the bat? We'll have to wait and watch because the players are celebrating. And Taylor walking back. Yes, that's a wicket for sure. Tried to play the ball. Edge from the bat, leading edge, straight into the hands of the fielder.
1: जब आप दुविधा के शिकार होते हैं तो इस तरह की गलतियां करते हैं. स्ट्रोक खेलें ना खेलें, बैकफुट पर गई, हल्के से मोड़ना चाहती थी लेकिन एक आसान सा कैच हवा में न तो अपने आप को पोजीशन कर पाई और बल्ले को भी तरीके से गेंद के पीछे नहीं ला पाई. बल्ले का जो सिरा था उससे जाकर के गेंद टकराई और इसीलिए वो जो उसे मोड़ना चाहती थी हाथ से वो मोड़ नहीं पाई. तीसरा विकेट वेस्ट इंडीज ने गंवा दिया. स्टेफानी टेलर, एक अनुभवी बैटर, वो भी बाहर जाते हुए वेस्ट इंडीज के लिए अब मुश्किलों का पहाड़.
0: वेल दैट्स रियली मिजरीज कंपाउंडिंग फॉर द वेस्ट इंडीज साइड. स्टेफानी टेलर गोइंग बैक इनटू द पवेलियन, गेटिंग द लीडिंग एज, जस्ट क्लोजिंग द फेस ऑफ द बैट व्हेन द बॉल वाज स्लाइटली ऑन द मिडिल स्टंप. एंड आई वाज स्केयर्ड दैट इफ द बॉल हैडन गॉट द बैट इट वुड हैव सर्टेनली गॉट हर लेग बिफोर, बट देन ट्राइंग टू just about turned the ball on the onside across the line, got a leading edge and the ball went an easy catch into the mid-wicket region and another wicket falls. So now the Australian side must be really gung-ho about it and their confidence level must have really gone skywards because they now look to be a very confident side, the Australian team. And we have seen, whether it be the men's side or the women's side, the Australians are always capable of a comeback. However you score against them. Here is Gardner bowling to Claxton, who's a new batter. The first delivery around the wicket, right on the middle and leg, keeping low. And she can't take a chance against her. And the ball played forward in defense and no run results. But Taylor's, I think, exit would have certainly put enough pressures on the West Indies side. Gardner comes in for the fourth time, this time on the middle and leg. The batter unable to play the ball. It's a productive stroke. Plays it down into the hands of the fielder in the mid-wicket region. And no runs taken. So all the bowlers look to be wicket-taking bowlers as far as Australia is concerned. The last two deliveries of the 11th over bowls from the corner of the crease. This time the batter steps up. Goodness me. Another wicket goes. Trying to play the ball into the cover region. Keeps it up in the sky. And the fielder once again getting a regulation catch right in front of the chest. And wicket number 4 goes. Claxton also going without scoring.
1: गार्डनर ने दूसरा विकेट निकाल लिया इस ओवर के अंदर और उसी जगह पर पकड़ी गई क्लैक्सटन. आगे पढ़ करके स्ट्रोक खेलना चाहती थी, हवा में स्ट्रोक था और उसे कोई गलती नहीं की पकड़ने में. तो अब वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ही मुश्किलों का समय. 59 रन पर 4 विकेट गंवा दिए. गार्डनर को 2 विकेट मिले. शानदार सफलता.
0: Well, West Indies going from misery to misery and these two wickets are both batters going at no score. Certainly would put a compounding pressure on the West Indies side, whereas the Australians are now looking pretty happy and they're celebrating. And as I was telling you, Sanjay, a little while ago, that all the bowlers look to be wicket-taking because one of the strengths I find by the bowlers is that they're bowling stump to stump. They're not varying their line or length so much. They're just bowling the right delivery, right on the stump line. If the batter makes a mistake, there you are. So now, a big question, how many more runs before the 20 overs get completed, because we haven't seen the kind of boundaries except for 1-6 earlier from Joseph. There's not been great batting potential from West Indies.
1: बहुत हैरत में डाला है West Indian ने. अब तक ये आखिरी गेंद है Gardner की.
0: Next one, which is outside the off stump and a bit of bounce collected over the stumps there. Very good over from Gardner. 11 overs gone. West Indies 59 for 4. This run rate is 5.36.
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: तो अगले ओवर की शुरुआत हो रही है. वेस्ट इंडीज ने अपने 4 बैटर्स गंवा दिए हैं और शुरुआती अगर बैटर्स इस तरह से चले जाएं कोई बड़ा स्कोर किए बिना तो प्रेशर नीचे के लिए आता है. शिनेल हेनरी आ रही हैं और इसकी वजह यह है कि डॉटन आज मैदान के ऊपर अब तक दिखाई नहीं दी हैं. एक दृश्य में हमने देखा था कि वो थोड़ी सी इंजर्ड दिखाई दे रही थी. अब उनकी वापसी होगी या नहीं. पिछली 18 गेंदों में 4 विकेट गिर चुके हैं. और रन्स तो नाम मात्र के ही बने हैं।

0: बेरहम बारहवें ओवर की पहली गेंद डाल चुकी हैं। हेनरी का जहां तक सवाल, 5 मैचों में 82 रन, स्ट्राइक रेट 137। बेरहम की एक गेंद और इस बार बैकफुट पर जाकर के गैप्स तलाशा, एक रन के लिए अपनी दौड़ पूरी की वहां पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, ये एक रन और पूरा किया। फॉयबे लिचफील्ड वहां मौजूद थी और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ पहुंच गया है 61 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद को रक्षात्मक तरीके से रोका, खेल की जो गति है वो तकरीबन वेस्ट इंडियन बैटर्स की वजह से बहुत धीमी होती हुई, न तो रन बन रहे हैं न विकेट सुरक्षित हैं, तो वो एक ऐसी स्थिति में हैं जहां से शायद उन्हें उबर पाना कोई आसान काम होगा नहीं। और इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार भी कोई रन नहीं, गेंद सीधे फील्डर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। जहां तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल है, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें इस विश्व कप में, तो दक्षिण अफ्रीका को 65 रन से हराया, बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया, इसके अलावा नेदरलैंड्स को 98 रन से ये स्ट्रोक खेला। वेरहम की गेंद पर कैंपबेल ने इकलौते रन के लिए, एक एक रन आ रहे हैं, कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान पर 113 रन की शानदार जीत और उसके बाद भारत को उन्होंने पराजित किया। 3.882 का नेट रन रेट था और वो तब था जब ज्यादातर टीमों का नेट रन रेट माइनस पे था। 12वें ओवर की आखिरी गेंद वेरहम की, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, अब तक 3 डॉट बॉल डाली उन्होंने, रनों का औसत लगातार नीचे जाता हुआ 5.24 पर, तैयार है स्ट्राइक लेने के लिए, फ्लाइट कराने की कोशिश, ड्राइव किया, हालांकि गेंद की एकदम जो टर्न थी उसके नीचे नहीं पहुंची थी, गिल्लियां बिखेरी गईं, लेकिन रन यहां पर पूरे हो गए। और इस रन के साथ, हालांकि ऐसा भी लगता है कि शायद बिल्कुल एक रन दिया गया है, 12 ओवर के बाद स्कोर है वेस्ट इंडीज का 63 पर 4।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: वेस्ट इंडीज इन डायर स्ट्रेट्स, 63 for 4 एंड अ स्कोर, एज शमस सेज दैट इन द लास्ट 3 ओवर्स 12 runs were made, I'm repeating, 12 runs, 4 wickets lost. What a deadly combo of the Australian bowlers. They really bowled well. Here's Gardner coming into bowl to the right-handed Henry, who gets the ball to come in and plays it down into the mid-off region, and easy-looking tap shot, and the ball collected there, and 1 run taken. Henry goes into 3, she'd taken a couple of runs earlier. Campbell on 12, so we've seen most of the batters struggling. Most of the batters have really been struggling on the pitch here. Here is Gardner coming into ball, this time into Campbell. Campbell goes forward, daringly plays the ball across the line into the mid-wicket region. And before you could say Jack Robinson, she's crossed over for a single. So that is what they should be doing. They should get every opportunity, convert ones into twos, pick up the gaps and not just keep batting on and play their shots. Pick up the gaps, this one, next one, around the wicket, rather over the wicket, correction there. And Henry plays it across to the offside, moving away from the line of the ball, but then can't beat the fielder at wide-ish mid-off. Here's another delivery that comes in, keeps low, and Henry plays it down into the mid-off region. Good call by the known strike, Campbell. They cross over for a single, taking the score up by one more to 66 for 4. What a score this is. I mean, it is moving at worse than snail's pace. 66 for 4 in the, almost the 13th over. You've got 7 overs to go. Now, how much more really are to play out of the skins? And here's the next delivery, wrapping on the pads. And umpire Kim Cotton says, nothing doing. And would that mean that they take a review? They're still talking to each other. The ball came in quite sharply, Sanjay. That was very close.
0: Agar review nahi liya, to shayad isliye ke एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद लेग स्टंप के बाहर जा रही, रिव्यू ले लिया गया है।
2: The review has been taken, quite an afterthought. You get 30 seconds for that one, and if you don't get that right, then you're gone. So all the players coming in. This shows that the captain has the confidence on the bowler Gardner. And why not? The West Indies team is the dire straits, and the Australian side looking really, really good. So they've taken the review, and the third umpire there, Pereira, she's going to look into it. The only question here is, was the bat involved?

0: because the ball wasn't going very far away. It was almost like kissing the bat, but only the ultra edge might tell us what really happened, because that's the technology coming into play. The umpire had declared not out, so there should be a compelling reason for the batters to get out if the ball is hitting onto the stumps. We'll have to wait and watch. Where was the ball pitching and where was the ball going? Sanjay, you were probably looking at that option. Was it coming onto the stumps? But here it looks quite close. The ball was below the knee roll, and it appears that she's safe because there is a spike when the ball crosses the bat, and that's the reason the umpire did not give it as out there. And Kim Cotton was absolutely on the target, absolutely spot on. That's experience saying. So Australia has lost one of the reviews. They just got one more review. That was close, Sanjay, but except for the edge, she was absolutely beaten.
1: बिल्कुल बल्ले पर हल्का सा एक स्पर्श हुआ था और जिसका एहसास निश्चित तौर पर फील्डिंग कप्तान को नहीं था.
0: Next delivery outside the off stump. A bit of width offered and the batter moves away, plays it down into backward point. No runs taken. Very good over from Gardner. Just three singles given away. 66 for 4 after 13 overs, West Indies.
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: ये मत जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: तो वेस्ट इंडीज की निगाहें अब कितने स्कोर पर होंगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस गति से वो रन बना रहे हैं और जिस गति से उनके विकेट गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो परेशान करने वाला होगा इस टीम के लिए. ओवल में सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का 103 रन का था 8 विकेट के नुकसान पर. यहां 66 for 4 और 14वें ओवर की शुरुआत हो गई है. ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, अच्छा कट, हालांकि प्रयास था लेकिन 4.
5: ये लगा आभा का चौका.
0: And this one was played late because there was a width offered outside the off stump, but that was very close to the outstretched hand of the fielder there at backward point. And on a given day, that could have easily a large jaunty Rhodes kind of an approach to take, pick up that one in the air. Very fortunate for Henry.
1: Sutherland ke is over ki akli gend aur isko halke se keval place kiya tha iklaute run ke liye. Runon ki raftaar अभी भी तकरीबन धीमी सी बनी हुई, 6 के नीचे. स्कोर प्रेडिक्टर बता रहा 125. और अगर आप वेस्टइंडीज के लो टोटल्स का जिक्र करें तो कई बार उन्होंने गोते लगाए हैं. 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 43, 26 में श्रीलंका के खिलाफ 49, और इस बार इंतजार किया, पहले से कमिट हुए, गेम के टप्पे का इंतजार कर रहे थे. उन्हें उम्मीद थी कि शायद टप्पा ऊपर आएगा और उसे वो उलट करके थर्ड पेन की दिशा में या फाइन लेग की दिशा में निकालेगी, लेकिन जो अंदाज था उतनी गेंद ऊपर आई नहीं, बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हुआ नहीं, और इसी वजह से चलिए सुरक्षित अपनी जगह पर. डॉट बॉल, डॉट बॉल्स अच्छी खासी देखने को मिल रही है. 10 ओवर्स में 33 डॉट बॉल थी, 33 डॉट बॉल्स, यानी कि 5.5 ओवर डॉट बॉल से ही खत्म हुए थे, और वो आपके स्कोर में बिल्कुल साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है. 71 for 4, रन रेट 5.26. ऐसा लगता है कि रन रेट की जो सुई है वो अटक सी गई है, उसमें किसी तरह की हरकत दिखाई नहीं दे रही है. कैम्बल, जिन्होंने धमाकेदार शुरुआत की थी, आते ही साथ 2 चौके लगाए थे, अब 18 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बना सकी हैं. और इस बार मोड़ने का प्रयास बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कनेक्शन सही मिला नहीं, बल्ले के बीचों बीच आई नहीं, इकलौता रन सिर्फ मिल गया. तो इस ओवर में अब तक 6 रन बने हैं सदरलैंड के. उस लिहाज से वेस्ट इंडीज के हिसाब से अगर आप कहें तो ये एक बेहतर ओवर आप कह सकते हैं. सदरलैंड का जहां तक सवाल, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, मैथ्यूज इकलौती बैटर जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, पूरी तरह से बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहती थी हेनरी, लेकिन टाइमिंग गड़बड़, गेंद का टप्पा पहले खाया और बल्ला बाद में चला, लेकिन चलिए अपनी जगह पर सुरक्षित. और ये 72 for 4 14वें ओवर की आखिरी गेंद

0: आने वाली है सदरलैंड। बड़ा अटपटा सा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेलना चाहती थी, आड़ा बल्ला लगा, एक रन दौड़ करके पूरा किया, 14 के बाद 73 पर 4।
1: So well, now what we've seen is 14 overs, 73 for 4, time for drinks in the center, and I'm sure this would certainly give time for the West Indies side to take some change of course. But Sanjay, isn't it quite surprising that the power play saw 35 runs for no loss in just 4 boundaries odd, but now in the next 7 to 14 overs just 38 runs scored. And Shamas Sani says that last 5 overs 18 for 3, 18 runs and 3 wickets. What kind of a pressure was it? Now it looks as if the power play was a much better option.
0: बिल्कुल, लेकिन प्रेम अगर आप देखें तो असली जो प्रेशर है उन्होंने पावर प्ले में ही ले लिया था। अगर आप पावर प्ले में 34-35 रन बनाते हैं भले ही विकेट ना गिरे, तो ये बताता है कि आपके बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं रन बनाने में। और जोसेफ ने खास तौर पर शुरुआत जिस तरह से की, उनके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे थे, कनेक्शन मिला नहीं, तो वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव है, वो ऊपर से नीचे की ओर आता लगातार दिखाई दे रहा है। और कोई भी बैटर ऐसा नहीं है जो विकेट पर टिक करके एक बड़ी पारी खेल सके।
1: And another thing which I've observed, maybe you have also observed, that the bounce is a bit variable, and that's been keeping the batters completely on a tension mode. And once those first 2 wickets fell, the others looked like as if they were completely strokeless wonders.
0: जी बिल्कुल ठीक बात है प्रेम, और मुझे ये भी लगता है कि क्रिकेट का खेल हो या दुनिया में कोई भी खेल, मैदान पर तो खेला ही जाता है, दिमाग पर ज्यादा खेला जाता है। जब आपके 2 विकेट गिर जाते हैं तो वही जो बाउंस था, जो अब वेरिएबल दिखाई दे रहा है, वो पहले ठीक दिखाई दे रहा था। मैथ्यूज के स्ट्रोक बड़े शानदार थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह से प्रेशर ले लिया। अगर आप दब करके खेलेंगे, बहुत ज्यादा बैकफुट पर जाएंगे या स्ट्रोक्स नहीं लगाएंगे, तो फील्डर्स को आप न्योता देंगे कि आप उन पर दबाव बनाए।
1: बट लुक एट द अदर थिंग, look at the bowlers, they also bowled well. You saw Ashley Gardner coming with some very good bowling. Of course Garth and Hamilton started off seamers, but the spinners were more effective because they're bowling stump to stump, bowling the wrong ones and letting the ball come on to the stump line, and the batters, they make a mistake, and more often than not you have seen most of the wickets fall when they're trying to play the ball across the line.
0: Bilkul, aur मुझे तो लगता है कि क्रिकेट में, खासतौर पर shorter format के क्रिकेट में, अगर आप बिल्कुल stump to stump bowling करते हैं तो आप बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब स्टंप पर बॉल होती है, आप खींच करके फ्रस्ट्रेशन में कोई बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते हैं और जरा सी गेंद को मिस करते हैं तो आपका विकेट चला जाता है। तो लगातार अगर आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करेंगे, विड्थ नहीं मिलेगी ऑफ स्टंप के बाहर, तो फिर वो स्ट्रोक देखने को नहीं मिलेंगे, वो कॉन्फिडेंस बैटर के अंदर नहीं आएगा, और वही कहानी हुई है वेस्ट इंडीज की। और वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है कि अगर उसका दिन हो तो वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा दे, और नहीं तो दुनिया की किसी भी हल्की से हल्की टीम से भी हार जाए। हमने देखा है 2 मैचेस हारे हैं वो इस वर्ल्ड कप के बीच में, किस्मत अच्छी थी जो सेमीफाइनल में पहुंच गए।
1: Ashley Gardner really bowled well. Out of the 3 overs, she's got 12 dots in that, taken 2 wickets of 6 runs. She's the one who literally made that, move to put them under trouble. Here's a first over after drinks, and this is up in the air, goes high in the air. The fielder comes under and grabs this one, and that's Annabel Sutherland. Another wicket falls, just the first delivery after the drinks break, and the 5th wicket goes.
0: Aasan mauka. गेंद के ठीक पीछे थी, स्ट्रेट खेला था, एकदम लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक, वहां से सदरलैंड ने गेंद को फील किया, बढ़िया मौका, और उस मौके को तब्दील किया, कोई हड़बड़ाहट जल्दबाजी नहीं, और वेस्टइंडीज की पारी अब लगभग धराशायी होती हुई। हेनरी भी 11 गेंदों में 10 रन बनाकर बाहर जा रही है। मुश्किल का समय है, क्या वेस्टइंडीज 125 भी पहुंच पाएगा, 125 का स्कोर भी दे पाएगा? ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बैटिंग है, ये रन्स मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई चुनौती देने वाले हैं।
1: That's right, and I think they've just invited pressure on their shoulders to some very good bowling. I don't think it was extraordinary, but they kept bowling on the stump line and the batters committing mistake. And now I can see the pressure causing them further agony. Why? Because they're stepping out to play and risking their wickets.
0: शुरुआत के लिहाज में अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बॉल रुक करके आ रही है, और इसलिए जब वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जा रहे हैं तो एक तो उन्हें कनेक्शन मिल नहीं रहा है, टाइमिंग सही नहीं हो रही, और गेंद उछल करके इधर उधर जा रही है। ज्यादातर कैचेस हमने देखे पकड़े गए बहुत आसानी के साथ, तो अब करें तो

0: करें क्या, अगर आप हल्के से प्लेस करके रन लेने की कोशिश करेंगे तो एक एक रन से ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं, बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे तो कैच पकड़ने की उम्मीद है।
1: That's right. In the next ball, being played by Campbell, because they run across for a single and plays it down on the inside, takes a single and takes the score up to 74. And West Indies now looks to be in real dire straits. Absolute 74 for 5 in the 15th over continuing, as here is Molina bowling a slower delivery and the batter has to literally smash this one, plays it down into the whitish mid-off region, crosses over and takes a single. And now boundaries have become a kind of a precious item, and I'm sure Chama will just now tell me as to how many deliveries since we haven't seen a boundary. That's a very interesting thing. Our score is going to work on that. Here's the next delivery, which is back of the length spot there, and the batter off the back foot just punches down to the whitish mid-off region, picks up a single, easy looking single, and that takes the score snailing up to at a snail's pace, or cantering up to 76 for the loss of 5 wickets. 15th over, just 2 deliveries more, as here's the next one, that slightly short, plays it across the line, a sweep shot, but there is a superb piece of fielding there at backward square on the inside. The batters have in the meantime crossed over for a couple of runs, and that brings the score to 78 for 5. Nothing exciting about it. I'm sure the coaches, all of them must be really worried as to what should be the score after 20 overs.
0: Kehpana bada mushkil. West Indies bhi shayad uska anumaan nahi laga pa rahe honge. और ये स्ट्रोक खेलना चाहते थे एकदम सीधे, लेकिन गेंद बल्ले से लगती हुई थोड़ा सा ऑन साइड में गई, डीप में विकेट पर गेंद फील्ड हुई सदरलैंड के हाथों, लेकिन रन वहां पर मिल गया।
1: ऑलराइट, सो वेल संजय, इफ यू लुक एट द लास्ट 3 or 4 ओवर्स, द बैटर्स आर लिटरली स्ट्रगलिंग टू गेट इवन सिंगल्स एंड टूज, वेयर एवर दे प्लेइंग द बॉल दे गेट द बॉल फील्डेड।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: So you start a fresh over from Wareham, and that ball is in the air but safe of the fielders there. The ball will hit the fence for 4 runs at the whitish long off region.
5: Ye laga Abha ka chauka.
1: So this boundary, Sanjay, coming after 2 overs.
0: T20 international semi-final mukabla aur 2 over ke baad ek boundary West Indies ke batter se.
1: And that too not very convincing. That ball could have gone into the hands anyway. Wareham comes in over the wicket balls, and in the slot played onto the whitish mid-off region, straight into the hands of the fielder all along the ground. Campbell of course playing on 22 of 24, but it now looks as if even Campbell is not really gelling with the kind of stroke she's known for. Here's the next one, she daringly steps up and oh, that ball, is that a low catch? We'll have to wait and watch. And the ball has straight gone into the hands of the fielder there. Yes, that's another wicket there, and that ball went as a very low catch, trying to step out and play, just couldn't get in the middle of the bat, low toe end of the bat, and the catch coming into the whitish mid-off region.
0: एलिस पेरी ने बड़ा बढ़िया कैच पकड़ा नीचे झुकते हुए, तारीफ करनी होगी उनकी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्होंने, और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भले ही कामयाब नहीं थी लेकिन कैच छोड़ा नहीं। छठा विकेट चला गया वेस्ट इंडीज का, और अब ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज 100 के आंकड़े के लिए स्ट्रगल करता दिखाई देगा। कैम्बल ठीक ठाक खेल रही थी, कुल मिलाकर 22 रन बनाए उन्होंने, शुरुआत अच्छी की लेकिन बाद के ओवर्स में थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दिया, और अब डॉटेन आ रही हैं। डॉटेन आमतौर पर या तो मध्य क्रम में या पारी की शुरुआत करती हैं, एक अच्छी बैटर हैं टीम की। टियान्ड्रा डॉटेन कुल मिलाकर 153 मैचों में 3000 से ज्यादा रन हैं उनके, 14 अर्धशतक, 2 सेंचुरीज लगा चुकी हैं T20 इंटरनेशनल्स में, तो ये बताता है डॉटेन का कद क्या है। लेकिन आज मुकाबले से पहले थोड़ी सी चोटिल दिखाई दी, अब लगता है कि रिकवर करके वापस आई है।
1: संजय, अब शायद कहना पड़ेगा कि आप पछताए कहा हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
0: बिल्कुल, चिड़िया तो चुग गई है,

0: लेकिन ये अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है.
1: एब्सोल्युटली.
0: और आप आखिर तक कुछ कह नहीं सकते.
1: वेल डॉट इन कम्स इज इन अ पिट ऑफ अ बॉदर एज वेरम्स फर्स्ट डिलीवरी प्लेज ऑन द ऑफसाइड एंड नो रन्स टेकन. वी अर्लियर सॉ हाउ डॉट इन वाज कैरीड फ्रॉम द मिडल ऑफ द ग्राउंड वेयर शी वाज प्रैक्टिसिंग. दिस वाज नॉट इन द गेम. So here is the next delivery, which is outside the off stump. And once again, just about on the fourth stump, which the batter wanted to convert into a stalk on the offside, moving away from the line of the ball. And no runs taken. We have six fielders on the offside, three on the on, four on the fence, two in the one on the mid-wicket region, one on the backward square on the offside. Here's the next delivery, played on the offside. And that ball goes straight into the hands of Molyneux. And a very good chance of a run out goes out of hand for Australia. But I don't think they will mind ever. 16 overs gone. West Indies now 84 for 6.
2: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: तो डॉटन अब क्रीज पर आ चुकी है, लेकिन उनके आने से क्या वेस्ट इंडीज की उम्मीदें वापस जोर मारेंगी? क्या वेस्ट इंडीज इन आखिर के कुछ ओवर्स में, चार ओवर्स यानी कि 24 गेंदे बाकी हैं, 24 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन्स बना पाएंगे? क्योंकि अब उनकी पास बल्लेबाजी भी बहुत ज्यादा बाकी नहीं है. ग्लासगो हैं, फ्लेचर मुनीस, तो जो नीचे के बल्लेबाज हैं वही अब इसके बाद दिखाई देंगे. गार्डनर कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने आज, ये 17वां ओवर डाल रही है डॉटिंग के लिए. डॉटिंग ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को ड्राइव किया इकलौते रन के लिए. गेंद बल्ले से लगी और डॉटिंग ने अपने सफर की शुरुआत की. बहुत ही सॉलिड बैटर और लंबे समय से खेल रही है वेस्ट इंडीज के लिए. 2016 में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल के फाइनल में हराया था और उस टीम की पांच लड़कियां इस टीम में भी शामिल हैं. जो तजुर्बा है, अनुभव है, लेकिन उसका आज प्रतिफल दिखा नहीं. इस गेंद को हल्के से केवल प्लेस किया, इकलौता रन दौड़ करके पूरा किया. तो गार्डनर की दो गेंदों पर दो रन, वेस्ट इंडीज 86/6, 5.27 का औसत, रनों का औसत 5.25 के आसपास पूरी तरह से अटका हुआ है, न बढ़ता है न घटता है. और इस बार फिर निकाला मिड विकेट की दिशा में एक रन, ये दूसरे रन के लिए जा रही है. थोड़ा सा जोखिम हो सकता है, लेकिन आपको बिन आखिर के ओवर्स में जोखिम लेना ही होगा. गार्डनर ने बड़ी कसी हुई गेंदबाजी आज की है, अच्छा प्रदर्शन गार्डनर का. अगर आप देखें कुल मिलाकर चौथा ओवर उनका चल रहा है, उनकी इकोनॉमी है 2.86. T20 इंटरनेशनल में 2.86 की इकोनॉमी के साथ दो विकेट लिए गार्डनर ने. तुरुप का पत्ता है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए. और 17वां ओवर चलता हुआ ओवल में क्या वेस्ट इंडीज अपने बचाव के लिए आखिर के तीन ओवर्स में आतिशबाजी कर पाएगा? क्या डॉटन का बल्ला चलेगा? और इस बार गेंद पैट्स पर डालने की कोशिश की थी, लेकिन अपने शरीर से दूर धकेला, इकलौता रन. और इस एक रन के साथ वेस्ट इंडीज का स्कोर बढ़ता हुआ अब 90 रन 6 विकेट पर. डॉटन ने अब तक 5 रन बनाए 6 गेंदों से. ग्लासगो ने 4 रन बनाए हैं 4 गेंदों से. और गार्डनर के कोटे की आखिरी गेंद रक्षात्मक तरीके से रोका, एक रन दौड़ करके पूरा किया 17 के बाद 91/6.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: West Indies in dire straits, and Kamal Sanjay says proudly that, you know, 50 dots have been bowled. So Sanjay, imagine 8.2 overs of dot deliveries, 9 boundaries and a 6. That says the story.
0: बिल्कुल, अगर आप इतनी डॉट बॉल्स डालते हैं, गार्डनर ने देखिए 24 में से 12 डॉट बॉल्स डाली, गार्थ ने 18 में से 9 डॉट बॉल डाली, तो हर बॉलर ने यहां

0: इस ओवर में बने हैं जो कि सबसे ज्यादा हैं। मॉलिन्यू और सदरलैंड ने इससे पहले तीसरे और आठवें ओवर में 10-10 रन खर्च किए थे। तो ये तीन ओवर्स ऐसे हैं जो वेस्ट इंडीज के लिए लाभप्रद रहे हैं, लेकिन कहानी ये है कि वेस्ट इंडीज क्या अपने इस टारगेट को डिफेंड कर पाएगा। सामने शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, उनके जो बैटर्स हैं वो जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं वो सचमुच परेशान करने वाला है, चौंकाने वाला है। भारत की मजबूत टीम को जिस तरह से उन्होंने शिकस्त दी थी और जितने संतुलित तरीके से खेलते हैं, जिस रणनीति के साथ खेलते हैं, अगर गेंदबाजी करेंगे तो विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे। विकेट पर गेंद थी, इस बार गेंद को अपने से दूर धकेला एक रन के लिए। इसे एक रन के साथ, बल्कि दूसरा रन भी पूरा कर दिया तेजी के साथ दौड़ते हुए। रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर करने की जरूरत है इस समय। ये आखिर के एक दो ओवर्स ऐसे होते हैं जब आपको अपना सब कुछ झोंक देना होता है, और आज ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में जो दबाव बनाया है वो डॉट बॉल्स के जरिए बनाया है। पहले से कमिट हो गई थी स्ट्रोक के लिए, और ये देखते हुए मॉलिन्यू ने जहां पर खड़ी थी लेग स्टंप के बाहर तकरीबन उस गेंद को रखने की कोशिश की थी, एक रन दौड़ करके पूरा किया। स्कोर प्रेडिक्टर 120 से 25 की कहानी बता रहा है और रनों का जो औसत है वो अभी 5.84 है। मॉलिन्यू का ये आखिरी ओवर है, चार गेंदें बाकी हैं उनके इस कोटे की, दो विकेट उन्हें भी मिले हैं और इकोनॉमी 6.6 के आसपास। ओ, इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर और उठा दिया है गेंद को टप्पे के साथ, चार के लिए भी नहीं जा पाई, ऊंची गई लेकिन टप्पा खाने के बाद ठहर सी गई, और इसीलिए जो शायद उम्मीद थी एक बड़ा सा स्ट्रोक दिखाई दे रहा था वो नहीं बन पाया। दो रन दौड़ करके पूरे किए। डॉटन का बाद में आना क्या ये परेशानी का सबब था वेस्ट इंडीज के लिए? मॉलिन्यू की ये गेंद और इस बार करारा स्ट्रोक,
1: एंड दिस वन द बॉल गोज इनटू द ऑफसाइड टू द वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन, एंड वन मोर रन टेकन and the score moves up to 110 for the loss of 6 wickets. Dottin not in control of the shot, the ball just rolls over on the bat, and the pace of the ball was taken away because the ball rolling over the bat. Lucky there was not a catch in there. Here's Molyneux for the fifth time this over, and Glasgow steps out in confidence, didn't once again get hold of the ball. The ball goes into the wide-ish long off region. Sutherland picks up, disallowing the second run. The score now moves up to 111 for the loss of 6 wickets. And West Indies in real trouble there. Now, how much can you score in the last? I mean, you just left with 7 more deliveries to go.
0: Akhri game ka samna karengi Dottin. Aur is baar Dottin ne nikal diya on side par. Ek aur char.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: Once again, confidence oozing out of Dottin, and who steps out daringly and plays the ball to the offside, to the wide-ish, almost an extra cover region, let's put it that way, and a good boundary to end up that over. So it looks as if the West Indies team now looks better confident compared to what it was earlier, and Australian bowlers have really bowled wonderful. They've kept the ball on the stump line. Of course, occasional boundaries are bowled, but rather scored. But then the bowlers have done well. The highest score that the West Indies team in this World Cup, it was 163 for 3 versus New Zealand. Then was 153 for 6 versus Scotland. The lowest score was 99 for 5. That was against Sri Lanka. As Sutherland bowls the first delivery, and that ball once again played nicely onto the backward square on the inside. A bit of a risk involved, and the ball rushing to the fence for 4 runs on that occasion. Here comes Sutherland bowling outside the off stump, and that ball has been once again a crushing blow onto that one, to the extra cover fence for 4 runs.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: गुड गोइंग बाय दीज टू, गुड रिकवरी एक्शन, एंड द बॉल वाज ऑलमोस्ट होल्डिंग ऑन टू द पिच वेयर द राइट हैंडेड डॉटन प्लेड इट अक्रॉस टू द वाइडिश

0: Hello and a very warm welcome to Free Hit 20 as we have just witnessed the first innings of the first semi-final between Australia and West Indies in the ongoing ICC Women's T20 World Cup, where Australia, after having won the toss today, decided to bowl first and they were able to contain the West Indian team for a mere 125 runs on board within 20 overs. Now, will Australia be able to chase this target is what we have to speak and is what we have to now witness also. But for the moment, I'm Sakshi Mandwal, joined over here by my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit.
1: Good evening, Sakshi. Aur yahan par charcha karne ke liye hamare saath hain Ravinder Singh ji, BCCI coach, Rakesh Rao, sports journalist, aur Asha Rawat, former India batter. Aap teenon ka swagat hai. Asha ji, 125 runs 7 wicket khokar banaye hain West Indies ne. Kam hai ya kaafi hai?
2: नहीं, वैसे कम है. 125 जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बैलेंस्ड टीम है तो उनके लिए ये जो टारगेट है मुश्किल नहीं होगा, उनके लिए बहुत इजी होगा. अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की बात करूं तो अगर देखिए तो सारे जो बैटर थे ना वो केवल क्रॉस बैट चला रहे थे, मतलब बॉल की लाइन में नहीं खेल रहे थे. अगर वो उस बॉल की लाइन में खेलते तो मुझे लगता बेटर स्कोर होता.
3: आकाशवाणी ICC Women's T20 Cricket World Cup 2026 ലണ്ടനിലെ ഓവലിൽ വെച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം സെമി ഫൈനൽ

0: മിനിറ്റും 50 സെക്കൻഡും. ഇനി 8:45 സമാചർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹിയിലെ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए. रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी. गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारम्भ किया. दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू. मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना. और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से. अब समाचार विस्तार से. विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा. इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे. श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी. ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है. वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी. राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए. उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे. मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है.
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है. इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी. ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है. स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा. परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है. इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी. उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था

0: से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई ईओसीआई व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transfer

0: करती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: Facilitating mobility.
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
6: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come.

0: आभा का चौका।
1: तो एक और चौका, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए अब 53 पर। रनों की रफ्तार में कहीं कोई नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा। मुनी जिस तरह से उनकी निगाहें जमी हुई हैं, कोई भी स्ट्रोक खेलने में उन्हें परेशानी नहीं हो रही। अच्छा खासा तजुर्बा है मुनी के पास और उस तजुर्बे का यहां पर भरपूर लाभ लेते हुए बढ़िया चौका। और मुनी पहुंच गई है 15 गेंदों पर 31 रन की व्यक्तिगत रन संख्या पर। क्लैक्सटन पहली गेंद पर 4 दिया, दूसरी गेंद पर 4 दिया और ये तीसरी गेंद क्लैक्सटन की। लेकिन चलिए, वहां पर फील्डर मौजूद थी और इसलिए रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। शॉर्ट कवर पर गेंद फील्ड हुई। क्लैक्सटन का ये पहला ओवर है। अब तक अगर आप देखें तो 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। हेनरी है, मैथ्यूज हैं, रमार्क हैं और इसके अलावा क्लैक्सटन। और जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का सवाल है, ऑफ साइड पर एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश क्लैक्सटन की। ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाल दी गेंद और जब आप इतनी विड देंगी तो ये 4 लगेगा। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई गेंद 4 रनों के लिए।
0: ये लगा आभा का चौका।
1: ऑस्ट्रेलिया अब 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद का इंतजार किया, बहुत ज्यादा विड दी थी प्रेम।
2: वेरी क्लेवरली पुट्स इट अक्रॉस एंड यूज़ेस द पेस ऑफ द बॉल देयर एंड एक्सटेंड्स द बैट टू हर लेफ्ट फार अवे फ्रॉम द बॉडी, इन कंट्रोल ऑफ द शॉट एंड जस्ट प्लेस इट वेरी लेट एंड द बॉल स्क्वीजेस थ्रू द गैप। दैट इज अ वेरी वेल प्लेस्ड शॉट।
1: क्लैक्सटन काफी खर्चीली साबित हो रही है। अब तक 3 चौके दे दिए उन्होंने इस ओवर में। हाथ से राउंड द विकेट और इस बार इस गेंद को निकाला फाइन लेग की दिशा में। हालांकि ये 2 रन बनेंगे वहां पर जब तक गेंद वापस पहुंचती, तो कुल मिलाकर 14 रन अब तक खर्च कर चुकी हैं क्लैक्सटन अपने इस पहले ओवर में। और ये विकल्पहीनता की स्थिति है, क्या कप्तान अगले ओवर में फिर क्लैक्सटन का इस्तेमाल करेंगी या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन करेंगे। उनके पास विकल्प हैं लेकिन वो विकल्प कितने कारगर साबित होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो भी तब जबकि आपने कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया है। सिर्फ 67 रन चाहिए, 85 गेंदें बाकी। बार बार विड दे रही हैं और उसका बहुत सही इस्तेमाल गैप्स का। 1 और 4।
0: ये लगा आभा का चौका।
2: So, sixer was gone, 63-2, drinks on the field, but misery for the West Indies side. One must say that 18 runs of the last over from Claxton, who bowled her first over in this tournament, and she was nowhere in the line of length, and the batters prevailed, and Mooney obviously making sure that she tormented the bowlers, pulverized the bowling attack. And Sanjay, something very interesting, the 2 most dangerous batters are on the field right now for Australia. You got Perry, who's got a strike rate of 140 plus, and you have got Mooney, who's got a strike rate of 137 plus. Both of them, Perry had 2 half centuries and Mooney had 1 half century this particular series, so they are in a perfect mode to strike, and why not?
1: बिल्कुल, खासतौर पर एलिस पेरी का अगर आप जिक्र करें और मूनी, ये दोनों काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बेथ मूनी अपना 124वां मैच खेल रही हैं और एलिस पेरी 180वां मैच खेल रही हैं। तो ये बताता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ियों में आप शामिल करना चाहें तो ये प्लेयर्स निश्चित तौर पर हैं, और ये दोनों सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर और अपना अनुभव जिस तरह से प्रदर्शित करती हैं और उस अनुभव का जिस तरह से अपनी टीम को लाभ देती हैं, वो भी सचमुच काबिले तारीफ है।
2: एंड समटाइम्स आई वंडर आर वी मैच वाचिंग द सेम मैच ऑन द सेम फील्ड, बिकॉज़ ऑन द सेम वेरी ग्राउंड वेस्ट इंडीज वर स्ट्रगलिंग एंड यू फाइंड दीज 2 बैटर्स मूनी एंड पेरी प्लेइंग ऑथेंटिक क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, बोनाफाइड स्ट्रोक्स।
1: बिल्कुल प्रेम, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप एक टीम की जगह पर एक मशीन कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उनके बैटर्स, उनके बोलर्स सब अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है। वो मशीन की तरह खेलते हैं चाहे मुकाबला कोई भी हो। आप 5 के 5 मैचेस लीग दौर के देख लें और उसके बाद ये 6ठा मुकाबला भी तकरीबन उसी तर्ज पर चलता
2: हो। एब्सोल्युटली, आई मीन नो अदर फैक्टर कैन रियली रीडिफाइन द गेम ऑफ क्रिकेट। एंड शमा सैनी सेज दैट इन ऑस्ट्रेलिया 63-2, इट्स गॉट 9 बाउंड्रीज, 36 रन्स ऑफ 4s एंड अ 6, सो यू कैन इमेजिन that 42 runs of this has come through boundaries and a 6, out of which just about 11 dot deliveries. That is the way the batters have batted, playing some authentic

0: सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7। तुम रिपोर्ट।
1: सातवां ओवर शुरू हो रहा है 64/2। ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी संभवतः बेरी को और गार्टनर ने उनकी जगह ली है। फ्लेचर क्लैक्सटन की जगह गेंदबाजी में। फ्लेचर का जहां तक सवाल है, कुल मिलाकर 6 मैचेस में 4 विकेट, बेहतर इकोनॉमी, लेकिन आज उस इकोनॉमी का किस तरह से इस्तेमाल करती हैं। इस पर ऑफ स्टंप पर टप्पा डालने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला, बैकफुट पर गई, गेंद को खेला एकदम स्ट्रेट। हेनरी जब तक गेंद को फील करती दौड़ करके वहां पर रन पूरा किया। और जहां तक पेरी का सवाल है, रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा है। पिछला ओवर जो उन्होंने खेला था एलिने का, उस ओवर में ऐसा लगा कि वो बहुत सहज महसूस नहीं कर रही। सिर्फ इकलौता रन बना था, वो भी आखिरी गेंद पर, अन्यथा पहले 5 डॉट बॉल डाली थी एलेने ने और तमाम गेंदों का सामना पेरी ने किया था, तो कहीं ना कहीं शायद वो कुछ असहज महसूस कर रही थी और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह पर गार्डनर आई हैं बैटिंग के लिए। 66/2 फ्लेचर को लगाया गया है। फ्लेचर कितनी कारगर साबित होती है एलेने के बाद। फ्लाइट कराने की कोशिश, ड्राइव किया हाफ वॉली पर लेकर के, बॉलर के नजदीक से बॉल निकली, कोशिश की थी फ्लेचर ने बॉल को अपने नियंत्रण में लेने की, लेकिन कामयाब नहीं, एक रन लेने से नहीं रोक सकी। इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 67/2 विकेट पर। पेरी का बाहर जाना थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है, ऐसा लगता है कि अगर उन्हें थोड़ी बहुत कोई परेशानी थी तो उनके लिए विश्राम ज्यादा बेहतर एक साधन हो सकता था। फ्लेचर, पहला ओवर है उनका, अब तक 2 गेंदों पर 3 रन दिए उन्होंने। पहला सेमीफाइनल विश्व कप T20 का 2026, जहां दूसरे सेमीफाइनल में इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला होगा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की विजेता से। लेग स्टंप के बाहर थी, इस गेंद को खेलना चाहती थी, वाइड का इशारा आना चाहिए, आया, एक रन अतिरिक्त के तौर पर जुड़ा और अब 58 रन चाहिए 76 गेंदों पर। फ्लेचर की अगर आप गति देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, तकरीबन 75-76 के आसपास, लेकिन उसके बाद भी अगर आप वाइड डालेंगी, नो बॉल डालेंगी तो वो परेशानी का सबब। पैरों पर बॉल डालने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल, हल्के से केवल दिशा दी और दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया, बल्कि 1 नहीं 2 रन जब तक गेम फील्ड होकर के आती, काफी वक्त था दूसरा रन दौड़ने का। तो काफी कॉन्फिडेंट बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, कोई परेशानी नहीं और हल्के से केवल गेंद को खेला। कुल मिलाकर 6 रन इस ओवर में एक वाइड को मिलाकर के, और इस बार हल्का प्लेस किया था।
2: 71/2 and 7.4 overs Fletcher, who's got 4 wickets from 5 matches, but for the moment the objective is to keep the batters silenced. You got Gardner, 4 matches and 112 runs, strike rate being 169.6, so another batter with a very very devastating kind of a strike rate.
1: To Fletcher ab tak kul milakar 7 run de chuki unki ye gend, is bar fir flight karane ki koshish, halka sa shuffle kiya, mid wicket ki disha mein game ko khela, iklauta run, har gend par run lene ki koshish, रनों की रफ्तार बनी रहेगी। एशले गार्डनर एक ऐसी बैटर जिन पर इस टीम को पूरी तरह से भरोसा है, 105वां मैच अपना खेल रही है गार्डनर, और भारत के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है इससे पहले। हालांकि पेरी ने भी 38 गेंदों पर 56 रन बनाए थे, और गार्डनर इस समय देखना है कि अपनी टीम के स्कोर को कहां तक ले जा सकती। 53 रन बनाकर नाबाद थी भारत के खिलाफ, 29 गेंदों पर वो 53 रन उन्होंने बनाए थे। बैकफुट पर कहीं इस बार गेंद को मोड़ा इकलौते रन के लिए। 8 ओवर समाप्त, 8 ओवर के बाद 73/2 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा?

0: सुविधा के बारे में, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
0: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
0: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: दसवें ओवर की पहली गेंद ही वाइड लेग स्टंप से काफी बाहर। फ्लेचर जिस गति से गेंदें करती हैं, उस गति के हिसाब से उन्हें गेंद पर बेहतर नियंत्रण होना चाहिए। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद डाल दी फ्लेचर ने और इत्मीनान के साथ वहां पर एक अतिरिक्त रन जुटा दिया। जहां तक मुनी का सवाल है, मुनी ने आज अपने 3700 रन पूरे किए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान बैटिंग जो उनका लाइनअप है उनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। फ्लेचर की गेंद और इस बार स्टंप पर लेकर के आई। गार्डनर ने हल्का सा केवल अपने पल्ले भर से लटने दिया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया। 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया को अभी 43 रन की जरूरत है और 65 गेंदें बाकी हैं। T20 क्रिकेट में इससे आसान स्थिति और कुछ हो नहीं सकती। इस बार कदमों का इस्तेमाल गार्डनर का और गेंद सीधे 6 रनों के लिए। एक
5: ये लगा आभा का छक्का।
6: A great shot and great confidence oozing and played that shot with consummate ease as the delivery was bold. She was anticipating, stepped out, the footwork was important, picked up on a half volley and just about timed it well over the long on region.
4: तो बढ़िया स्ट्रोक और एक बड़ा सिक्सर। आज मैच में बहुत ज्यादा सिक्सर देखने को नहीं मिले। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का दूसरा या ज्यादा से ज्यादा तीसरा छक्का होगा। क्षमा इस समय बिल्कुल ये दूसरा सिक्सर था ऑस्ट्रेलिया की ओर से। एक छक्का वेस्ट इंडीज की ओर से लगा था तो कुल मिलाकर 3 सिक्सर्स। 10वां ओवर चलता हुआ और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 89 हो गया है, यानी कि 90 की तहलीज पर। कदमों का इस्तेमाल, फ्लाइटेड गेंद और एक बार फिर टप्पा खाते हुए गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर।
5: ये लगा आभा का चौका।
6: What a graceful inside-out shot, Sanjay. Picked up that length beautifully and played that with consummate ease. Just steps away from the line of the ball and that confident-looking inside-out shot.
4: Off stump ke bahar lagatar hit di hai Fletcher ne aur uska bharpoor istemal kiya hai. Gardner ab 9 gendon par 19 run bana chuki hai. Ek baar phir flight, lagatar flight kara rahi. Lekin agar aap stump par flight kara hai to chaliye usko rokne mein आपको मदद मिलेगी। हल्का सा केवल पुश था इकलौते रन के लिए। हर गेंद पर रन लेने की कोशिश, लेकिन एक शानदार छक्का और उसके बाद एक बाउंड्री ओवर में आई है फ्लेचर के। तो काफी खर्चीला ओवर फ्लेचर का अब तक। 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें बाकी, सिर्फ 35 रन की दरकार। गार्डनर पहुंच गई 20 पर और मुनी अपने अर्धशतक की दहलीज पर। 46 रन बना चुकी है मुनी पर। शफल किया और हल्के से केवल गेंद को मोड़ दिया। 1 रन लेना चाहती थी लेकिन दूसरे रन का भी मौका दिखा और उस मौके को उन्होंने तुरंत अपने हक में कन्वर्ट किया। बढ़िया दूसरा रन दोनों के बीच, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग विकेट के बीच में। इन 2 रनों के साथ अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बढ़ता हुआ 96 2 विकेट के नुकसान पर। 100 रनों की दहलीज पर पहुंच रहा है और 126 रन बनाने ऑस्ट्रेलिया को। इकलौता रन और ये आखिरी गेम थी। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया अब 97 पे 2।

0: अलेने के हाथों दौड़कर के रन पूरे किए 106 दो विकेट के नुकसान पर। तो अब सिर्फ 20 रन बचे हैं, 20 रन और बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को। और जाहिर है कि जब आप इतने विकेट्स लेकर के 20 रन आपको बनाने हैं और सिर्फ 12वां ओवर चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है उस स्थिति में अब कोई शायद चमत्कार ही वेस्ट इंडीज को वापस ला सकता है 106 पर। तो गार्डनर 23, मूनी 55 और ओवल का मैदान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। फील्ड में थोड़ा सा तब्दीलियां की जा रही हैं, खासतौर पर जो ऑन साइड की फील्ड प्लेसमेंट है उसमें ड्राइव किया था, हाफ बॉली का ड्राइव था और एक रन दौड़ करके पूरा किया। दूसरे रन के लिए स्टार्ट लेना चाहती थी लेकिन कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं, वो 19 रन बाकी हैं, 52 गेंदें बाकी हैं। मुनी अर्धशतक अपना पूरा कर चुकी हैं। अगर आप मुनी का करियर का अर्धशतक देखें तो एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अर्धशतक लगाए और इस बार अच्छा ड्राइव था, बढ़िया ड्राइव। यहां पर रन मिलेगा सिर्फ एक लौता क्योंकि हेनरी वहां मौजूद और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 108। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा। भारत साउथ अफ्रीका से भी शिकस्त खाया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी उसे पराजित किया था और इन दो पराजय की वजह से वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। बल्ले के निचले हिस्से से लगा लेकिन रन जरूर मिलेंगे, यहां पर एक रन की गुंजाइश थी लेकिन इत्मीनान के साथ दौड़ते हुए दो रन पूरे किए। वो आक्रामकता जो वेस्ट इंडीज के फील्डर्स में होनी चाहिए फिलहाल नदारद दिखती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पर वो ये मान चुके हैं कि ये मुकाबला उनके हाथ से निकल गया है। थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है इस समय यूरोप में, आप लगातार इन खबरों को सुन भी रहे होंगे, तो उसका असर यहां स्टेडियम में मौजूद दर्शकों पर भी देखने को मिल रहा है।
1: Yes, certainly Europe going through a tough summer this season, 41.5 degrees elsewhere, and the score now reaches Nelson at 111 with that single just tucked away on the onside, and Glasgow the fielder, and Ram Harrod giving away 6 runs of 5 deliveries, a better over from her comparatively, but now Australia just a question of time winning this match. Here's the next delivery from Ramparak, plays it onto the onside, just pushes that onto the onside to pick up a couple of runs to end the over. 12 overs gone, a single rather, not the second run. 112 for the loss of 2 wickets after 12 overs.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: So well, for the moment, Australia cruising past the expectations of the West Indies that they would do any such thing to stop their run rate, but not really. 14 runs of 48 deliveries, as here's the first delivery of a fresh over. That's outside the off stump, plays it down into the offside to the extra cover region, picked up, and the batter's Mooney has crossed over for a couple of runs, taking the score of hers to 59 and the score to 113 for the loss of 2 wickets. Slowly but steadily, Gardner and Mooney taking Australia to the step closer to another finals. They won 6 of them in the T20 format and entering the finals once again and to face the winners between the England-South Africa match in the second semi-finals. 13 runs of 47 deliveries

0: सीधे फाइनल में जगह बना ली है। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच के लिए।
1: प्लेयर ऑफ द मैच।

0: And with that, Australia have gone on to win the first semi-final match that was held against West Indies in mere 13 overs, chasing a target of 125. They needed 126 to win, and the Australians made it look like a cakewalk because they were able to chase the target within 13 overs. I'm Sakshi Mandwal, welcoming all you listeners to our show Player of the Match for the ongoing ICC Presents Women's T20 World Cup. Joining me over here is my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit.
1: Good evening, Sakshi. तो जहाँ तक World Cup Finals की बात है, वहाँ पर एक टीम तो तय हो गई, Australia. आज बहुत ही dominant जीत, Australia ने 8 विकेटों से West Indies को हरा दिया है. और चर्चा करने के लिए यहाँ आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ हैं आशा रावत, former India cricketer. नमस्कार. राकेश राव, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, गुड इवनिंग. और साथ ही रविंदर सिंह हमारे साथ हैं, बीसीसीआई कोच. तो आशा जी, बधाई दे दें ऑस्ट्रेलिया को.
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो ऑस्ट्रेलिया को. जिस हिसाब से मैं कह ही रही थी कि अगर इस मैच को वेस्टइंडीज को जीतना है तो जो दो तीन प्लेयर हेली मैथ्यूज, डॉटेन, इनको, स्टेफनी टेलर, इनको स्कोर करना चाहिए था. तो स्कोर होता तो जो मैच जो था वो कुछ फाइट के लिए जाता, तो स्कोर नहीं था इतना. फिर उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेला, मैंने जो बात करी थी कि वेस्ट इंडीज़ के जो बैटर बैटिंग कर रहे थे वो क्रॉस खेल रहे थे ज़्यादा, मतलब बॉल के पिच में भी नहीं आ रहे थे. वैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखें, चाहे गार्डनर को देखें, चाहे बेंट मॉनी को देखें, तो वो ना बॉल के ऊपर चढ़ के बॉल, मतलब अगर वो स्टेप आउट भी करते तो बॉल क्रॉस नहीं खेला उन्होंने कोई भी शॉट. कवर्स ड्राइव खेले उन्होंने, तो स्ट्रेट खेला, मतलब वी शेप में उन्होंने शॉट्स खेले.
0: Right, and Beth Mooney, since you just spoke about her, put up an exceptional knock today. 36 balls, 61 runs, which included 8 fours at a strike rate of almost 170, 169.44 to be precise. Rakesh, I'll come to you. Well, West Indies were able to get one quick wicket early on, 29 for the loss of the first wicket, but 125, we all knew, were never going to be enough for West Indies to turn the tide in their favour.
3: Absolutely, because there was no pressure from the scoreboard. And when you don't have that thing first up, I mean, anything like 150, 160 would have been, because if you're looking to give your spinners a chance, you should have runs on the board. And here, of course, they just raced away with it. Like, they were averaging almost 10 runs an over. Like 13 would mean that they were almost 10 runs an over. So that's the kind of team that you have to, you know, I mean, the kind of performance that you have to give. If you are up against a weaker opposition, it's not just that you go and win. You score an emphatic win. You have to tell that other team, there's a difference between us. Gee, and the difference was reflected in that with 8 wickets and 7 overs to spare.
1: Aap teenon se hi ek sawal, Ravindar ji, aaj player of the match kaun banega?
4: मुझे लग रहा है कि वही बैटिंग है, बॉलिंग में तो ज्यादा दो उसमें उन्होंने 61 रन बनाए 36 जो उसमें बॉलों में, मुझे लगता है मुनी कोई चांसेस लग रहा है.
1: और कोई दावेदार है?
3: अब इन्होंने मुनी कह दिया है, विच इज ऑब्वियस मुझे लग रहा है, बट मैं कहता हूँ एश गार्डनर हो सकती है, क्योंकि 2 विकेट लिया है और नॉट आउट रही है, और लास्ट में जो भी उन्होंने 35 रन बनाए हैं.
1: अब आशा तय करेंगी.
2: मुझे संकट में डालती है.
1: आप कोई तीसरा दावेदार भी लाइए.
2: नहीं, तीसरा दावेदार वैसे है नहीं, उन दोनों में से ही किसी एक को मिलेगा. तो मुझे जहां तक लगता है जिसने 50, बेथ मॉनी ने 50 करा है, तो
1: और विकेट कीपिंग भी तो की है. कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि 20 ओवर उसने कीपिंग भी तो की है.
2: हाँ, करी तो है, सही बात बोली है आपने. तो इसी डाउट में मैं बेथ मॉनी को बोलती हूँ.
0: राइट, ओके, क्योंकि द गेम टुडे इज ओवर ऑब्वियसली, बट अब ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में जा रही है. क्या आपको ऐसा लग रहा है आशा कि ऑस्ट्रेलिया शायद इस वक्त अपने खेलने के अंदाज से एक इनविंसिबल टीम लग रही है, जिसको शायद कोई भी ना हरा पाए अब?
2: नहीं, मैं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली फाइनल में पहुंची है, बट आप इंग्लैंड को भी कम,
0: या फिर साउथ अफ्रीका.
2: हाँ, अभी तो चलिए, हाँ, वो तो गेम अभी बचा है, वो तो डिसाइड करेगा 2 तारीख को ही करेगा. पर ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से आज

0: की फिटनेस में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। उनकी फील्डिंग देखिए, अपनी फील्डिंग देखिए, बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको। हमारे यहाँ पे जब वो मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका का, चार प्लेयर भारत थे और राधा यादव तो फील्डिंग करने आई थी, उसके ऊपर इतनी बड़ी बैंडेज लगा रखी है, चोट लगी हुई थी उनको, तब भी वो फील्डिंग करने आई रही थी। बाकी तीनों प्लेयर्स को मैनेजमेंट ने ये नहीं समझा कि वो फील्डिंग के लायक भी है कि नहीं है। तो ये देखिए, आप बैटिंग बॉलिंग सब करते हैं, फील्डिंग सबसे बड़ा पार्ट है। जब तक आप फील्डिंग नहीं करेंगे, जब तक आप ग्राउंड में अपना पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग करने आप ग्राउंड में नहीं आते, आपको महीने महीने की फिटनेस कैंप चाहिए होते हैं। और जिस दिन इंडियन टीम, चाहे कोई इंडियन टीम फील्डिंग पे ध्यान देगी, उस दिन इंडियन टीम की ऑस्ट्रेलिया के साथ ही फाइट जीतेगी और सब टीम।
1: इंडियन टीम की पूर्व सदस्य से पूछ लेते हैं, फिटनेस पे कितना ध्यान देते थे आप?
2: हमारे टाइम में तो T20 होता ही नहीं था ना, तो फिटनेस में कोई ध्यान ही नहीं देता। सर ने सही बोला कि T20 की वजह, बल्कि जब से T20 आया तो मुझे लगता है फिटनेस में तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो पर ध्यान नहीं दिया जाता। और फील्डिंग में मतलब आप निग्लेक्ट करते हैं फील्डिंग को, तो
1: नहीं भले ODI टेस्ट हो, फील्डिंग एक प्रायोरिटी थी तब?
2: नहीं थी।
1: आज है,
2: आज T20 है, तो मेरे साइड अगर मैं कोच होती तो मैं देती, मैं उसको पहले लेती जिसकी फील्डिंग अच्छी है, जो फिट है। सर ने बिल्कुल सही बोला, अगर आप सिंगल डबल नहीं भाग पाएंगे, अगर आप फिट नहीं है तो कैसे लेंगे? अब आप देखिए, कैच बनानी पड़ती है, कैच कभी भी आपके हाथ में नहीं आएगी, आपको कैच बनाना पड़ेगा, विकेट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए एफर्ट्स मानना पड़ेगा। तो एफर्ट तभी मानेंगे ना जब आप फिट है। और T20 इतना फास्ट गेम होता है ना, उसमें आपका माइंड नहीं चलता इतना, बट अगर आप फिट है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको लगना है, कहाँ पे बॉल आ रही है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ता है।
1: तो कोच साहब से पूछते हैं, सर ये कैच आते आते झलक क्यों जाती है हाथ से?
0: देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि झलक जाती है, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे फील्डर्स भी कैच छूट सकती है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ये देखिए, आप कितना टाइम आप कैचेस लेते हैं। आप जो अच्छे अच्छे फील्डर्स हैं, मैं देख उनको सुना, मैंने पढ़ा भी, देखा भी है, वो 500-500, 300-400 कैचेस डेली पकड़ रहे हैं, उनको हाथ में ऐसा लगता है कि बॉल उनके हाथ में ही, उनके साथ ही चिपक जाती है। तो ये सिर्फ टाइम स्पेंड करने की बात है।
1: राकेश, हमने देखा है इंडिया में हम लोग ऐसे हाथ करके कैच लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे थैथेली खोल कर सूरज की तरफ, तो फर्क क्या है दोनों में?
3: फर्क दोनों का आपका ट्रेनिंग मेथड ही वही है कि रिवर्स कप जैसे आप लेते हैं, ऑस्ट्रेलियंस लेते हैं, उनकी आदत है, उनको ट्रेन ही ऐसे किया जाता है। ये नहीं कि उसमें कुछ कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, ऐसा नहीं है, बट फर्क ये है कि उसमें आपका पाम पहले आता है, फिंगर्स बाद में आती हैं, आप इम्पैक्ट लेते हैं पाम के ऊपर पहले। हमारे इसमें क्या होता है कि हम फिंगर में इंजरी होने का हमारा चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हाथ आपका खुल जाता है, उनका जो है कप में उनका उनकी उंगलियाँ जुड़ी रहती हैं पहले, जो थंब है वो दोनों जुड़े हुए हैं उनके, हमारे दोनों थंब अलग अलग जगह हैं कम्प्लीटली। तो ये एक फर्क आ जाता है उसमें, इसलिए आपका जो इम्पैक्ट होता है वो उनकी आदत है। और अगर आप वही चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है और हमारा वाला सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको जैसे ट्रेन किया जाता है वो उसी हिसाब से चलता है। और दूसरी चीज ये कि फील्डिंग का जो एस्पेक्ट है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारा फील्डिंग के ऊपर वो जितना दम होना चाहिए था, मेंस क्रिकेट में भी बहुत रिसेंट है, हमारे कुछ फील्डर्स को हमें छुपाना पड़ता था एक जमाने में, हम लोग बोला करते थे 11 में 11 फील्डर्स नहीं है हमारे। मदन लाल, मोहिंदर अमरनाथ बहुत अच्छे होते थे, मैं 60s लेट 60s की बात कर रहा हूँ या 70s की बात करूँ, आबिद अली, कुसोलकर, इन लोगों के हम नाम ले सकते थे, बाकियों के नाम नहीं ले रहे हैं हम लोग। स्लिप फील्डर्स को हम गिनते ही नहीं थे कि चलो भाई आ जाएगा ले लेंगे, आउटफील्ड में नहीं होते थे हमारे पास फील्डर्स, और खासकर वो एम्फेसिस भी नहीं था। इन्होंने अभी कहा कि 400-400, 500-500 कैचेस लेते हैं, अजहरुद्दीन का जमाना ले लेते हैं 90s का, जबकि वो 200-200 कैचेस वो लेते थे 100 सुबह 100 शाम को, वो एक ही इंसान होता था जो दो बार नेट्स के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए कमरे से बाहर निकलता था, एंड ही वांटेड ऑल दोस कैचेस, और हमें याद नहीं पड़ता कि अजहरुद्दीन ने कोई कैच छोड़ा हो, कपिल देव ने कोई कैच छोड़ा हो, मतलब ऐसे थे। इनकी ट्रेनिंग मेथड अलग होते थे, लेकिन हाँ आजकल तो बहुत स्पेशलाइज्ड है, आपका ट्रेनिंग मेथड्स बदल गए हैं, मैच सिचुएशन में भी आपको रख के कैच प्रैक्टिस होती है, तो विमेंस क्रिकेट में तो हमें बहुत दूर जाना है, अभी बहुत वक्त लगेगा।
4: ओके राकेश, आई विल जस्ट टेक अ पॉइंट फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट वी यू टॉकिंग अबाउट द पास्ट ऑफ कोर्स, बट इन रियल टाइम इफ यू लुक टुडे द गेम दैट वी जस्ट सॉ, हाउ डू यू असेस वेस्ट इंडीज विमेंस क्रिकेट नाउ? बिकॉज सी दिस टीम हैज लॉस्ट 7 में से 6 सेमीफाइनल मैचेस इन द रीसेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स, एक ही जीते थे 2016 का एडिशन। What does it speak of the West Indies cricket now?
3: See, West Indies cricket is undergoing a transition for far too long. Because if you go to West Indies now, it's no longer that the poor guys are taking the game. They're only playing T20 cricket at best. That's why their test team has been hit for a 6. White ball cricket is dying there because people are no longer interested in the game like they used to be, because they're not winning.

0: those big ones. So their cricket is suffering, women's cricket is also suffering, and they've been a cash trapped, you know, association. Doesn't have that kind of money. Their sponsors, when they come to India, the Indian companies sponsor them. They don't come here with a sponsor. They come here and then they get sponsorship. So a lot of issues there, lack of interest. Women's cricket is also not too far from where the men are.
1: Ji, is some ek aur caller hai phone line par. Hello.
2: Hello.
1: Namaskar ji.
2: Ji namaskar, sir, khairiyat hai?
1: Ji, bilkul khairiyat hai. Aap apna naam bataiye.
2: Ji sir, mera naam Mohammad Hamran Beg hai. Main Ambedkar Nagar se bol raha hu, Uttar Pradesh.
1: Kya sawal hai aapka?
2: ये सर मेरा सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम हो चाहे वुमेन्स टीम हो, ऐसी क्या खुसूसियत उनके अंदर खासियत है जिसकी वजह से जो बाकी टीमों में नहीं है कि बड़े मोर्चे में वो आगे निकल जाते हैं बाकी टीमें पीछे रह जाती हैं। खास तौर से मैं अपनी इंडियन टीम के बारे में जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो सुविधाएं भी ज्यादा है, खिलाड़ी भी ज्यादा, उसके बावजूद क्या कमी रह जाती है आखिर।
1: जी शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आशा, जिस तरह से हमने 2025 में ODI वर्ल्ड कप जीता तो इंडियन टीम एक अच्छे हाई पर आ रही थी, आप कैसे देखते हैं इंडियन टीम का कैंपेन यहाँ पर और फिर ऑस्ट्रेलिया से हार के वो नॉकआउट से बाहर हुई?
3: इंडियन टीम जैसे
4: आई टेक द क्वेश्चन, मैं रवि के पास आ जाती हूँ। रवि, अगर हम बात करें कि भारतीय महिलाओं की टीम जिस तरह से हम हारे इस सीजन भी, अगर देखें साउथ अफ्रीका से भी हार गए जहाँ से हमें लग रहा था कि अब हमारा सेमीफाइनल का सफर खत्म है, ऑस्ट्रेलिया से तो हार ही गए हम, क्या कमियाँ आपको दिखती हैं प्रेजेंट भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंदर जिसकी वजह से जो बड़ी टीमें हैं, दिग्गज देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये हमें आसानी से हरा देते हैं?
5: देखिए, अफ्रीका के इस मैच में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने था, हम मैच जीत रहे थे और हम किस कारण से हारे सबको पता है, कैसे तीन कैचें छोड़ी गई उस समय। मैंने आपको पहले बोला फील्डिंग, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आपके पास अच्छे बैटर्स हैं, नो डाउट बैटिंग में ठीक है, बॉलिंग आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, आप लैक करते हैं सिर्फ फील्डिंग में। जिस दिन इंडिया का फील्डिंग पार्ट अच्छा हो जाएगा, जिस दिन इंडिया ने फील्डिंग अपनी इंप्रूव कर ली और एक ये स्टार्स जो कल्चर है इसको दूर कर लिया, तो आप उसी लेवल पे खड़े होंगे जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खड़े हैं।
1: पर आपको लगता है आशा एक अच्छी बात कैंपेन की रही कि शेफाली, जिनको हम बैटिंग के लिए जानते हैं, इस बार वो बॉलिंग कर रही हैं, ओपन भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी की उन्होंने?
3: हाँ, मतलब ये है कि जो इंडियन टीम है हमारी, अगर मैं पहले के मुताबिक बोलूँ तो बहुत फर्क आया है, चाहे उनकी फील्डिंग में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जैसे देखती आई, पहले जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था बहुत नीचे था, बट अब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा फील्डिंग का स्टैंडर्ड हो गया। बट बात वही है, स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है पर औरों का हमसे और अच्छा हो गया है। तो मतलब हमें, जैसे अभी सर ने एक बात बोली मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि जैसे कैचिंग, अगर आप फील्डिंग इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप 50-50 या 200-200 कैचेस करनी चाहिए। जैसे हम बैटिंग करते हैं ना, तो बैटिंग में हम वो नॉक करते रहते हैं, हम 200-200 बॉल खेलते हैं तभी हमारे वो बैटिंग स्ट्रोक इम्प्रूव होता है, तो वैसी फील्डिंग के लिए भी वही बात है, पर वो चीज कोई करता नहीं है ना, कोचिज, मेरे ख्याल से कोचिज भी इतना नहीं करवाते हैं।
1: जी बिल्कुल। और अगर अब हम यहाँ से देखें तो दो ही साइड्स हैं जो अनबीटन है अब तक, ऑस्ट्रेलिया 5 मैच जीती, आज भी 6, उधर इंग्लैंड। आपको लगता है क्योंकि इंग्लैंड में मुकाबला हो रहा है तो इंग्लैंड अब यहाँ पर एक फेवरेट है कि सेमीफाइनल्स में, क्या उम्मीद करें सेकंड सेमीफाइनल्स में?
0: फेवरेट नहीं कहूंगा मैं, मगर ये जरूर कहूंगा कि उनके चांसेस आपको कम आंकने नहीं चाहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया को मैं रन अवे फेवरेट्स नहीं कह रहा हूँ, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, इंग्लैंड की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जहां कंडीशंस में ज्यादा खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो इंग्लैंड के पास रहेगा, तो वो एडवांटेज आप उनसे ले नहीं सकते। हाँ, उस दिन क्या होता है वो अपनी जगह है, इस वक्त अगर हम ये मान के चलें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का फाइनल होगा तो इंग्लैंड के चांसेस काफी ब्राइट होंगे, जो और किसी टीम के बारे में आप नहीं कह सकते, न्यूजीलैंड और यू नो साउथ अफ्रीका, इंडिया, किसी भी टीम से अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच आप कहेंगे साहब कल होने वाला है तो मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया ओवरवेलमिंग फेवरेट है, नॉट अगेंस्ट इंग्लैंड।
4: ओके, रवि आपके पास आती हूँ। चलिए, ये बात तो सही है काफी हद तक कि इंग्लैंड के पास होम कंडीशंस का एडवांटेज है, लेकिन उसके साथ साथ सेमीफाइनल जैसा बड़ा मुकाबला, उसमें माइंडसेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउथ अफ्रीका क्या आपको लगता है किस तरीके का माइंडसेट आमतौर पर दिखाती है? क्या आपको लग रहा है कि इंग्लैंड के मुकाबले में ये अपनी चोकिंग जो मेंटालिटी है उसको ओवरकम कर पाएंगे?
5: देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस मैच को हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका की टीम बहुत ही फाइटर टीम है और अभी उनकी कैप्टन मुझे उसको अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रही। अगर वो लॉरा उस समय अगर उनके ऊपर बहुत बड़ा मैच का दामदार है, देखिए 20 ओवर का मैच कोई बड़ा मैच नहीं होता, दो प्लेयर खड़े हो जाते हैं तो मैच बराबर कर देते हैं। और अगर यही लॉरा उस दिन अच्छे तरह, लॉरा जब बैटिंग करती है तो वो सीधा 80-100 से लंबे स्कोर बनाती है, तो ये मैच एक अच्छा मैच होने वाला, एडवांटेज है नो डाउट, होम एडवांटेज तो होता ही है, लेकिन होम एडवांटेज में भी बहुत, घर में भी बहुत टीमें हारती हैं, इसके ऊपर
1: साउथ अफ्रीका में कप्तान लॉरा वुलवर तो है ही, लेकिन भारत के मुकाबले में हमने देखा मैरिसन कैप ने नीचे आके बड़ा अच्छा

0: खेला, तो आपको लगता है कि इनके पास अच्छे बैटर्स बॉलर्स हैं?
1: अगर मैं साउथ अफ्रीका टीम को देखूंगी तो वो भी बैलेंस टीम है, और ऐसे ही नहीं कह सकते कि इंग्लैंड मतलब होम टीम है तो वही जीतेगी। सब जो बात होती है एक स्टेज में एक मेंटल जो अपने माइंडसेट को माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल कर दे, प्रेशर को कंट्रोल कर दे, तो वो भी मतलब मैच निकाल देता है। अभी जैसे आज मैच हुआ ना, तो वेस्ट इंडीज क्या मुझे लगता है वो उनको प्रेशर हावी हो गया, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग कर रहे थे सारे एक ही जैसे बैटिंग कर रहे थे, कोई कुछ किसी ने मतलब सिंपल क्रिकेट की भी खेलता ना कोई तो मुझे लगता फिर भी कुछ होता, सब क्रॉस उनको लगा T20 है बस। तो उस हिसाब से अगर जो प्रेशर को हैंडल कर लेगा ना वो मैच निकाल लेगा।
2: ओके, क्विक प्रेडिक्शन फ्रॉम ऑल आवर थ्री पैनलिस्ट, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है कि वो सेमीफाइनल कौन जीतने वाला है? रवि आपसे शुरू,
3: एडवांटेज इंग्लैंड का, नो
2: डाउट
4: एडवांटेज इंग्लैंड, इंग्लैंड को तो मैं कह रहा हूँ कि वो फाइनल खेलेगी, तो ऑब्वियसली मैं साउथ अफ्रीका से उनको अच्छी मानता हूँ। साउथ अफ्रीका का अटैक अच्छा है, हम लोग सिर्फ वुमेन जब बात करते हैं बैटिंग बैटिंग बैटिंग बैटिंग देखते हैं, ऑब्वियसली अच्छी होती है, लेकिन साउथ अफ्रीका का अटैक बेटर है काफी टीमों से, और वो टीम इंडिया को हराने के बाद इस स्टेज पे पहुंची है, तो एक कॉन्फिडेंस उनके साथ जरूर है। अगर उनको ये सेल्फ बिलीफ है कि हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है अंदर, तो जैसे इन्होंने कहा बहुत अच्छा मुकाबला हो सकता है
2: जी। और आशा,
1: मैंने बोला ना जो प्रेशर को हैंडल कर देगा ना उस दिन वो जीतेगा,
2: क्योंकि टीम दोनों में नहीं दे रहे हो,
1: नहीं दूंगी
0: जी। लेकिन क्रिकेट की जब बात होती है तो जो सुर्खियां बन रही हैं वो चाहे वुमेन क्रिकेट हो मेन क्रिकेट, बेन स्टोक्स इतने बड़े खिलाड़ी और एकाएक उनका डिसीजन आना, आप कैसे देखते हैं? एक अपना ही एरा था बेन स्टोक्स का।
4: बेन स्टोक्स को याद किया जाएगा उनको एज एन ऑलराउंडर, यस, फॉर बीइंग टेम्परामेंटल एट टाइम्स, नॉट गोइंग बाय द बुक ऑल द टाइम, और जो वर्ल्ड कप फाइनल में जो उनका नॉक था, जैसे न्यूजीलैंड से ऑलमोस्ट उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच ले लिया, और ऑफ कोर्स अजीबोगरीब चीज़ें हुई उस फाइनल में 2019, बट ओवरऑल आई स्टिल फील दैट बेन स्टोक्स विल बी रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स फ्रॉम इंग्लैंड।
0: और इंग्लैंड सीरीज कल से शुरू हो रही है पुरुषों में, वहाँ पे एनी प्रेडिक्शंस?
4: Predictions, I think Indians will have to work very hard to win.
0: Especially after defeat with Ireland.
4: No, they won't let that happen because the conditions are different. Yes. But very challenging test for India.
0: बिल्कुल, लेकिन हम श्रेयस अय्यर जो नए कप्तान बने हैं उनको शुभकामनाएं देते हैं, और आपको एक बार याद दिला दें कि जो दूसरा सेमीफाइनल है वुमेन्स वर्ल्ड कप का वो परसों होगा 2 जुलाई को, और आकाशवाणी पर आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा हमारे विशेष कार्यक्रम और आंखों देखा हाल के लिए शाम 10:30 बजे। जी हाँ, पूरी रात अपनी है, 10:30 बजे विशेष कार्यक्रम और फिर आंखों देखा हाल। लेकिन फिलहाल पहले सेमीफाइनल पर चर्चा करने के लिए आशा रावत आपका, राकेश राव और रविंदर सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच,
4: बहुत शुक्रिया।
2: एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू टू ऑल आवर लिसनर्स फॉर जॉइनिंग इन। दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड अमित अरोरा सेइंग गुड बाय, बट ऑल्सो गिविंग अ हार्टफुल थैंक यू टू आवर टेक्निकल टीम, जयराम, अनिरुद्ध गुप्ता, नागेंद्र कुमार पाटिल, प्रसून कुमार, आ प्रोडक्शन टीम स्वाति कपूर, तन्मय भट्ट, विद्वान वास, एंड आ प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, द टीम, द पीपल, द मेन, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस हु ब्रिंग यू द शोज बैक टू बैक एंड ऑल्सो द कमेंट्री। थैंक यू सो मच टू ऑल आर लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज अमित अरोरा एंड साक्षी मांडवाल सेइंग गुड नाइट, गुड बाय।
5: प्लेयर ऑफ द मैच, अभी आप ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
6: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फर्स्ट सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टइंडीज ऑफ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
7: Akashvani, ICC Women's T20 Cricket World Cup 2026-il Londonile Ovalil vechu Australiayum West Indiesum thammil nadana onnam semi final malsarathinte talsamaya vivaranamaanu shrothakal iduvare kettathu.